FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संबत 1948 के श्रावण माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:54 हो चुके।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब आइए हिंदी में समाचार के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर
2: जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
1: ये है विविध भारती।

पहले सुनिए चिंतन। चिंतन में आज दार्शनिक सुकरात के विचार। सुकरात के अनुसार भौतिक धन दौलत से ज्यादा इंसान को अपनी आत्मा और चरित्र को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। ये था चिंतन। और अब वंदनवार में आप सुनेंगे भक्तिपद।

अब कासे कहूँ दुख सारा, सुनो सुनो है कृष्ण काला, मेरे पाँव तो हों

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आपसे थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का 265वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, कलाकार पंडित सी आर व्यास, इसका भाग 4 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। सुबह 7 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 7:30 पर आप सुनते हैं हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय सुबह 8:15 और दोपहर 2 आलेख और स्वर राजेंद्र त्रिपाठी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 पर। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सोनू निगम पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम होगा आज के मेहमान पार्श्व गायक मुकेश की याद में गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। दिन में 11 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे 2:30 पर सखी सहेली कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 3। आज के विषय रहेंगे बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां, कहानी पद्मश्री की डॉक्टर बुधरी ताती पर आज ये चर्चा होगी, मुझे कुछ कहना है मैं थूकने की बुरी आदत पर बातचीत होगी और जलने कटने पर उपयोगी टिप्स दिए जाएंगे। आज का प्रोग्राम पेश करेंगी सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे, संवादक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र नेगी। संध्या 5 छाया गीत का पुनः प्रसारण 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन संध्या 6:35 पर, जयमाला का वक्त है संध्या 7 और संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे इनसे मिलिए आज पार्श्व गायिका सोनाली वाजपेयी से गणेश शर्मा की बातचीत प्रसारित होगी। रात्रि 8 हवा महल में सुनिएगा झलकी बलि का बकरा, लेखक निर्देशक मुकुल गोस्वामी। रात्रि 9 आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए और रात्रि 10 छाये गीत का प्रसारण होगा, आलेख और स्वर जी श्याम का। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। जरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए भाग 265।

0: पदमानस गान का 265वां भाग।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास।
1: नमस्कार, अभी गौड़ सारंग के बारे में बात करेंगे। एक गौड़ क्या है, एक सोचने की बात है। गौड़ बिलावल है, गौड़ सारंग है, गौड़ मल्लार है, ऐसे जो गौड़ के प्रकार है उसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि जिसमें ये म्यूजिकल फ्रेज आती है, सा रे सा ग रे म ग म रे ग सा ग रे म ग, ये संगति जिसमें है वो गौड़ का अंग है। अभी गौड़ सारंग में एक बंदिश पेश कर रहा हूँ मैं। ये बंदिश ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा एक पुरानी बंदिश है,

अभी ये बंदिश में या राग का बंद ये मुखड़ा जो सम जो आती है ना दैवत पे आती है, बहुत कम सुनाई देती है ऐसी बंदिश, लेकिन ये बंदिश में दैवत ऐसा रखा है तो एक सोचने की बात है कि गौड़सारंग में दैवत पे बंदिश कैसी रखी है, ऐसे लोग पूछते हैं। लेकिन अभी पुराने ज़माने में जो कलाकार थे उसने ये सोच के करा है किया है तो हमको तो ये मानना चाहिए कि ऐसा हो सकता है।

और एक संगति आती है इसमें, जो निषाद पे बहुत ही स्ट्रेच कर रही है। छांड दे मोरी मैया, बहुत सारे कम लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन ये बताने में कोई हर्ज नहीं। जहाँ तक हमारी पुराने बंदिश में ये जगह रखी है, तो ऐसा उसका विस्तार करने में कोई नुकसान नहीं है। अभी गौड़ सारंग, गौड़ बिलावल की एक बंदिश गा के बताता हूँ।

मिलावल समय है, बाकी एक गौड़ की संगति रखा है उसके लिए उसको गौड़ मिलावल कहते हैं। गौड़ सारंग की दूसरी बंदिश है,

कहने का मतलब ये है कि गौड़सार्ग में गरे मेघो संगति बहुत ही प्रोमिनेंट है और इसको बार बार दोहराना चाहिए, तब ये राग का नक्शा जो है, फेस जो है, बराबर दिखेगा।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा इस श्रृंखला की चौथी कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। हारमोनियम पर इनके साथ संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूप।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: भोले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाज अमीरबाई कर्नाटकी की थी। फिल्म का नाम था देवकन्या। गीतकार राम मूर्ति थे और संगीत दिया था श्याम सुंदर ने। आइए सुनते हैं फिल्म अनमोल घड़ी का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की, गीत रचना तनवीर नकवी की और संगीत नौशाद साहब का।
1: खिलौना टूटा बालक तेरा, खिलौना टूटा तेरा, खिलौना

भगवान ले लो भूखा हिंदुस्तान, ले लो ये मेड इन जापान, ये है लल्लू ये है ज्ञान, ये है कल्लू ये है प्राण, तू क्यों रोता चंद्रभान, माने बेटा मेरी जान, ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान, ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले अपने

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हम जूली से, आवाज नूरजहां की, शब्दकार अंजुम और संगीतकार हाफिज खान।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: मुकेश की आवाज में हम आपको फिल्म अनोखी अदा का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद साहब।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ललिता और चितलकर की आवाजी। फिल्म का नाम है नदिया के पार। इसे लिखा है मोती ने और धुन बनाई है चितलकर यानी सी रामचंद्र ने।

फिल्म चंद्रलेखा का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गायिका हैं उमा देवी, बोल पंडित इंदिरा के और तर्ज एस राजेश्वर राव की है।

0: यह आवाज थी उमा देवी की और फिल्म का नाम था चंद्रलेखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं सी रामचंद्र का संगीत, PL संतोषी की गीत रचना, चितलकर और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म का नाम सरगम।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, आवाज सुरैया की फिल्म का नाम दास्तान। इसे शकील बदायूनी ने लिखा और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का प्रातःकालीन इस सूचना कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस विचार से करते हैं। डॉक्टर APJ कलाम के अनुसार, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। इस विचार के बाद आइए जानते हैं हम आज का इतिहास।

श्रोताओं, आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल द्वारा खाली किए क्षेत्रों में शांति सेना की तैनाती प्रारंभ की थी। 30 जुलाई 2002 में कनाडा ने अलकायदा सहित 7 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। आज ही के दिन 2004 में भारत और पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना पर बातचीत बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई और 30 जुलाई 2007 में चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाओ में लगभग 50 लाख साल पुरानी चट्टानों की खोज की थी।

श्रोताओं, अब आइए जानते हैं आज के दिन जन्म व्यक्तियों के बारे में। 30 जुलाई 1923 में गोविंद चंद्र पांडे का जन्म हुआ था, जो 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ और सौंदर्य शास्त्री थे। आज के दिन 1887 में अर्टा बल्लाभा मोहती का जन्म हुआ था, जो उड़िया साहित्यकार थे। भारत सरकार ने उन्हें साल 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।

30 जुलाई 1886 में आज ही के दिन मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था, जो भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थी। 30 जुलाई 1882 में सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म हुआ था, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। श्रोताओं, आइए उनके बारे में जानते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। 30 जुलाई 2019 में सुबीर गोकर्ण का निधन हुआ था, जो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। आज ही के दिन 1979 में विष्णुपद मुखर्जी का भी निधन हुआ था, जो भारतीय औषध विज्ञानी और आर्थोपेडिक सर्जन थे। 1969 में अट्टा पल्लभा मोती का

निधन हुआ था, जो उड़िया साहित्यकार थे। और 1771 में आज के दिन थॉमस ग्रे का भी निधन हुआ था, जो 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थे। आप सभी को भी नम श्रद्धांजलि आकाशवाणी परिवार की ओर से।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में सुने एक प्यारा गीत फिल्म जुर्माना से, आवाज लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी के और संगीत आर डी बर्मन का।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, अब आइए जान लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और मौसम का पूर्वानुमान। जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास के अनुसार जिलाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत बालू घाटों के संचालन से संबंधित नई खनन नियमावली तथा जिला अंतर्गत अनिलामित बालू घाटों की नीलामी संपन्न कराने के संबंध में विचार हेतु बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बालूघाट के बंदोबस्ती से नई खनन नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही खनिज लदे वाहनों की गाड़ियों के ड्राइवर को नियंत्रित गति में वाहन चलाने की बात कही गई, जिससे दुर्घटना ना हो। साथ ही बालूघाटों के संचालकों द्वारा जिला अंतर्गत बड़े वाहनों के सुगम आवागमन के लिए पाली रेलवे पुल के निर्माण तथा डेहरी अकोड़ी गोला तथा विक्रमगंज में नो एंट्री से राहत की बात कही गई। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाली पुल के निर्माण हेतु डिवीजन रेलवे मैनेजर DDU से बात करने की बात कही तथा नो एंट्री से राहत हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। बैठक में बालूघाटों के प्रतिनिधि एवं सहायक निदेशक जिला खनन कार्यालय रोहतास उपस्थित थे। और श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं मौसम का हाल। आज सुबह सूर्योदय हुआ 5:20 पर और सूर्यास्त होगा 6:35 पर। आज दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने वाला है और रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री। आकाश में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। और श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में सुनवाते हैं एक और प्यारा गीत। खानदान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ है, नक्श लयालपुरी के बोल और खयाम का संगीत। आइए सुनें।

श्रोताओं, आइए जान लेते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई आज की सुर्खियों को। चारों अखबारों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, जिनमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर शामिल है। चारों अखबारों की प्रमुख सुर्खी है, 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, सम्राट चौधरी का कहना है। आखिरकार बिहार सरकार ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE4 के तहत 32,388 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। बुधवार को सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग को इसकी आधिकारिक अधियाचना भेज दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कक्षा के हिसाब से शिक्षकों की संख्या बताई। इसे विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। दो वर्ष के दौरान TRE 1, 2, 3 में कुल 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकली। 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, इनमें से 2 लाख अभ्यर्थियों का चयन हुआ। TRE 1 में 1,70,000 वैकेंसी थी। इस परीक्षा में केवल 1,20,000 अभ्यर्थी पास हुए। TRE 2 में 70,000 पदों की वैकेंसी निकली, इसमें TRE 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ा गया, यानी TRE

में कुल 1,20,000 पदों की वैकेंसी रही। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अब इस वैकेंसी की खास बातों को भी बता देते हैं। वादे से ज्यादा पद। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसी महीने 20,000 से अधिक रिक्तियों की अधियाचना भेजने की बात कही थी। इससे अधिक 32,388 पदों की अधियाचना भेजी गई। 5 साल में 1 लाख का लक्ष्य। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा है। सरकार के इस संकल्प की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। समयबद्धता और पारदर्शिता। मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता समयबद्धता के साथ नौकरी रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार के हर शहर में बनेगी सिग्नेचर रोड, बदल जाएगी शहरों की पहचान। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही शहरों के समग्र एवं सुनियोजित विकास के उद्देश्य से अल्पकालिक और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का चयन तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी नगर निकायों को ऐसे अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है जिन्हें अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जा सके। इसके लिए योजनाओं का शीघ्र चयन, प्रशासनिक स्वीकृति तथा समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँच सके। मंत्री मिश्रा ने कहा कि हर शहर में 1 से 2 किलोमीटर लंबी एक सिग्नेचर रोड बनाई जाएगी जो उस शहर की नई पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ सड़क बनाना नहीं बल्कि शहरों की पूरी तस्वीर बदलना है। समयबद्ध और प्रभावी योजनाओं के जरिए बिहार के शहरों को स्वच्छ, आधुनिक और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। दैनिक जागरण की ही सुर्खी है, फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर लगेगी रोक। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को कड़ा करने के लिए सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश किया है। गृह मंत्रालय की ओर से पेश किए गए विधेयक का उद्देश्य फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर अंकुश लगाना है। विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 साल से अधिक समय बाद प्रमाण पत्र बनाने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य करने का प्रावधान है। दरअसल SIR के दौरान कई राज्यों और खासकर बंगाल में बड़े पैमाने पर जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। इनमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया होने की आशंका है। इसे देखते हुए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को सख्त करने का फैसला किया। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिले इस विधेयक में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) में संशोधन का प्रस्ताव है। नए प्रावधानों से जन्म और मृत्यु की समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा। जन्म या मृत्यु के 1 साल से 2 साल के बीच पंजीकरण के लिए DM, SDM या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, गरीब कोटे के लिए 8 लाख की आय सीमा वाजिब, ये कहना है कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए की आर्थिक वार्षिक आय की सीमा पहली नजर में उचित प्रतीत होती है। शीर्ष कोर्ट ने अमौखिक टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की जिनमें 2021 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के एक अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना में मेडिकल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% कोटे का प्रावधान है। हिंदुस्तान की ही सुर्खी है, VS3 वाहनों के रबर पार्ट में एथेनॉल से खराबी संभव। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को संसद में कहा गया कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से VS3 गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है, इस कारण उनके कुछ रबर पार्ट्स को बदलना पड़ सकता है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दोपहिया और चारपहिया गाड़ियों पर E20 के असर का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि ई

ईंधन की वजह से कार और दुपहिया वाहनों के इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि माइलेज ईंधन के अलावा कई और वजहों से भी प्रभावित होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गाड़ी चलाने स्टार्ट होने की क्षमता, मेटल और प्लास्टिक के साथ तालमेल जैसे पैमानों पर कोई समस्या नहीं देखी गई। साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कहा कि वे E20 ईंधन का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के लिए वारंटी क्लेम देती रहेगी। गडकरी ने कहा कि 26 दिसंबर 2020 को नीति आयोग के तहत बनी एक अंतर मंत्रालय समिति ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से गाड़ियों की क्षमता और माइलेज की जांच की। और श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं अर्थ जगत और खेल जगत का हाल। सबसे पहले जानते हैं खेल जगत का हाल। भारत के अनुभवी शटलर HS प्रणय और युवा स्टार उन्नति हुडा ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के शानदार शुरुआत करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सातवीं सीड प्रणय ने जापान के माइनोरु कोगा को मात्र 35 मिनट में 21-11, 21-14 से एक तरफा मात दी। अन्य भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में किरण जॉर्ज और थरुण मन्नेपल्ली ने भी अपने अपने मुकाबले जीते। महिला सिंगल्स में तीसरी सीड उन्नति ने ताइवान की पेई यू वांग को 21-12, 21-18 से हराया। इसके अलावा भारत की देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब भी जीती। और अब आइए जानते हैं अर्थ जगत का हाल। रिटर्न फाइल में नहीं करे देर, 31 जुलाई है अंतिम तिथि। आकलन वर्ष 2026-27 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न ITR फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन में बस 2 दिन बचे हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने करदाताओं को याद दिलाया है कि वे फाइलिंग में देरी नहीं करें और आखिरी समय की परेशानियों से बचे। एक्स पर एक्स पोस्ट में विभाग ने करदाताओं को इसे टालने के खिलाफ चेतावनी दी। विभाग ने कहा, मैं इसे कल करूंगा वाली आम सोच अक्सर डेडलाइन वाले दिन घबराहट में बदल जाती है। विभाग ने योग्य करदाताओं को सलाह दी है कि वे ITR1 और ITR2 की फाइलिंग जल्द से जल्द पूरी कर ले, जिससे तकनीकी दिक्कतों, पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक और ड्यू डेट के आसपास होने वाले अनावश्यक तनाव से बचा जा सके। और श्रोता, इसी के साथ नमस्ते रोहतास का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। एक नए अंक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर।

0: और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन सुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे

0: दाता से।
1: ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, और इसी के साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8:20 हो चुके हैं। लीजिए, अब पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आपके भेजे हुए पत्रों को हमने शामिल कर लिया है। पहला पत्र हमें मिला है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के गीत के लिए। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को सुनना चाहते हैं। पठान टोली कलेर से मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदा फारजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, आफिया तस्नीम और अलीशा। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। एक और पत्र ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरे पत्र को किसी भी गीत में शामिल कर दें। तो आप सभी श्रोता हैं जातुका किशनपुर से, आलम दिलकश शबाना।

नाज रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सवाना आलम, चांदनी जहां और अर्ज। तो चलिए आप भी सुनिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

रोटी कपड़ा और मकान फर्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, आप आए बाहर आई इस फिल्म का गीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जिन्होंने ये पत्र भेजा है।

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। थाना मोड़ गढ़नौखा रोहतास से ये श्रोता है, इनको भी हम सुनवा रहे हैं। इसे फिल्म का गीत आफ है मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। तो चलिए आप सभी सुनिए आप आए बहार आई फिल्म का ये गीत।

आप आए बहार आए इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। अब आइए सुनते अगला गीत मुकेश की आवाज में, हरियाली और रास्ता फिल्म से ये गीत, जिसे सुनना चाहा है कुवात से शेख जफर हसन और राकेश रोशन और आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने सुनना चाहा है कोई भी गीत, तो इनको भी हम सुनवा रहे हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का ही ये गीत। और एक और पत्र है, इन्होंने भी लिखा अपनी पसंद से कोई भी गीत सुना दे। आप हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। तो चलिए हम सभी सुनते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का गीत मुकेश की आवाज़ में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आप सभी का पसंद आपके कार्यक्रम में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, इस बागपेली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुड़ी गुप्ता, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मयराज, गुनगुन और साक्षी मिश्रा। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। कुछ और पत्र ले लेते हैं। ये हमारे श्रोता है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला ने सुनना चाहा है कोई भी गीत। तो आप सभी को सुनवा रहे हैं पाकीज़ा फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनें।

0: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
1: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
0: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु पालकों एवं कृत्रिम गर्भाधान यानी AI से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
3: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT से ही कराएं। AI कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें, ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक

0: दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप AI तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान जारी। राज्य मंत्री परिषद ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 3,79,000 से अधिक मतदाता 25 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लंबे समय से भाजपा का कट रही इस सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन सुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। इधर पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदान के लिए मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष के पास। जी आशीष, कैसा माहौल है मतदान केंद्र का?
1: जी अभिषेक, मैं इस समय पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर हूँ। यहाँ महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हम आपकी सीधी बात करवाते हैं एक मतदाता से जिन्होंने अभी अभी अपना मतदान किया है।
2: संजू कुमार, उम्मीद तो यही है कि अच्छा करे, विकास करे, और क्या है इसमें।
3: सबसे पहले मतदान किया है आपने, और भी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
2: हम तो यही कहते हैं कि सब लोग से अपील करते हैं कि भाई सब लोग वोट दीजिए, अपना मतदान भूलिए मत।
1: जी अभिषेक, मैंने और भी कुछ मतदाताओं से बात की जिन्होंने कहा कि वो उन्होंने विकास समेत अन्य मुद्दों पर अपना मतदान किया है।
0: जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 30 आदर्श मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा 29 चलंत मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। सभी बूथों से मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। पोलिंग बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों के साथ साथ जिला पुलिस बल के 5,000 जवानों और होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है। मतदाता टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की

0: सूचना दी जा सकती है। प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें सेविका के 6,141 और सहायिका के 16,750 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पोषक क्षेत्र के बहुल्य वर्ग की महिलाओं को चयन में प्राथमिकता मिलेगी।
1: समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें 2022 के पूर्व जो व्यवस्था थी बाहुल्यता के आधार पर चयन के उस प्रक्रिया को लाया जा रहा है। इससे करीब करीब 22,000 सेविका सहायिकाओं के चयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में खेलों के विकास के लिए बिहार खेल नीति 2026 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के देने के साथ साथ इनके लिए पेंशन योजना का भी प्रावधान है।
1: बिहार खेल नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके 4 पिलर हैं: राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक कल्याण हेतु खेल तथा खेल एवं शिक्षा का एकीकरण। इसके लिए पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहली बार है जब बिहार राज्य में खेल नीति की स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कृषि के अतिरिक्त डेयरी, मत्स्य, कृषि व्यवसाय, भंडारण, प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र, पर्यटन और उभरते हुए गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
1: बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसका विजन है सशक्त सहकारिता समृद्ध बिहार। इसका मिशन है परंपरागत सहकारी संरचना को सुदृढ़ करते हुए सहकारी समितियों को आधुनिक, उत्तरदायी एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करना, नए एवं गैर परंपरागत क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से उन्हें भविष्य की चुनौतियों एवं अवसरों के लिए सक्षम बनाना, साथ ही युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
0: श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चौथे कृषि रोड मैप के लिए 367 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने पटना और मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार निवारण मामलों के लिए 3 विशेष अदालतों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को दरभंगा जिले में रैयाम और मधुबनी जिले में सकरी चीनी मिल की आधारशिला रखेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के तहत इन दोनों मिलों की पुनर्स्थापना हो रही है। श्री कुमार ने बताया कि दोनों मिलों में अगले सत्र से पेराई शुरू करने का लक्ष्य है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी जाएगी। सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और 20 नवंबर को हम लोग इसका शुरुआत भी करेंगे।
0: राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नए प्रावधान के तहत प्रत्येक 500 रिक्तियों पर एक पद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान छूट मिलेगी तथा उन्हें बिहार का मूल निवासी और सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र पेश करना होगा। बिहार पुलिस के सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए।

0: और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के 4 सोमवार पड़ेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पवित्र महीने की शुरुआत होने के साथ ही पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरियरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के पैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के बाणावर, लखीसराय के अशोक धाम, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दानापुर मंडल के फतुहा, हरदास बिघा, खुसरूपुर, करोटा, अथमलगोला, मनकट्ठा और गांधी हॉल्ट सहित विभिन्न स्टेशनों पर कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव किया गया है। यह व्यवस्था आज से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस साल जिले में अब तक 68 लोगों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 2 दिनों में 4 नए मरीजों के साथ जुलाई महीने में अब तक डेंगू के 23 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए पूर्व क्षेत्र की टीम का उपकप्तान बनाया गया है। टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे। 15 वर्षीय वैभव को पहली बार लाल गेंद के इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में उपकप्तान की जिम्मेदारी मिली है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में वैभव ने 230 स्थान की छलांग लगाकर 48वां स्थान हासिल किया है। वहीं ईशान किशन T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। वैशाली जिले के चर्चित फुटकुंड शुक्ला हत्याकांड में अदालत हाजीपुर की एक अदालत ने दोषी दीपक कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 1997 में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई भुटकुंड शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। औरंगाबाद जिले के जमहोर थाना क्षेत्र के बलिकरना गांव में भूमि विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुरारपुर इलाके में औषधि विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापेमारी कर लगभग 20 लाख रूपये मूल्य की नकली और सैंपल वाली दवाएं जब्त की है। मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के लव्वा लगान पूर्वी पंचायत के पौरा टोला में सड़क दुर्घटना में महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। पटना पुलिस ने चारधाम यात्रा के नाम पर हेलीकॉप्टर बुकिंग में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने और बिहार कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 10 घंटे घमासान के बाद एंटी पेपर लीक बिल पास, लोकसभा में राहुल ने छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर लगाए आरोप, सत्ता पक्ष ने किया विरोध। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य में

0: 55,279 पदों पर बंपर बहाली, 32,388 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, 6,141 सेविका और 16,750 सहायिका की भर्ती। दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के राज्यसभा में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, E20 से खराब हो सकते हैं BS3 वाहनों के रबड़ के पुर्जे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिजली कनेक्शन महंगा होगा लेकिन उपभोक्ता को सर्विस वायर नहीं देना होगा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार में ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी सरकार। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान जारी। राज्य मंत्री परिषद ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के 22,891 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। अब से थोड़ी ही देर में सुबह 9:10 पर हम सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमे। सुबह 9:30 पर हम आपको लेकर चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो और सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे साहित्यिक कार्यक्रम में वार्ता। विषय होगा सावन के झूले और कजरी गायन की परंपरा। वार्ताकार डॉ. श्याम सुंदर तिवारी से हम सुनेंगे ये वार्ता। और एक और वार्ता आप सुनेंगे, विषय होगा वाल्मीकि के राम की प्रासंगिकता। वार्ताकार डॉ. विजेंद्र पाठक से सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और सुबह 10:45 पर आप सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार। दिन में 11:00 हम चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो और सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:00 दिल्ली

शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनिएगा वंदन, और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाड़ी। इसमें हमारी बात के अंतर्गत विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस और साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद पर आपको जानकारी मिलेगी। गीत संगीत होगा इसमें, और योजना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे, और शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज की बातें में भेंटवार्ता सुनिएगा धान में जल प्रबंधन। भेंट वार्ताकार होंगे ब्रजेश किशोर बिमल, और भेंट करता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। नए उम्र की नई फसल में बैगन की खेती के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आज की नसीहत होगी धान में रखे उचित जल प्रबंधन। इस कार्यक्रम में आज के सूत्रधार होंगे शिव कुमार सिंह और राजेंद्र प्रसाद। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा, और शाम 7:15 पर हम लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा। शाम 7:50 पर आप सुनेगा ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:00 दिल्ली से संसद समीक्षा आप सुनेंगे, और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद का शेष भाग।

रात्रि 8:30 पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे। जिसका आज एपिसोड 3 का प्रसारण होगा। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत कार्यक्रम लोकधारा में। रात्रि 9:15 पर सजेगी गजलों की महफिल और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। रात्रि 10:15 पर रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग आप सुनेंगे। रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। और रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से ही रात्रि 11:05 पर होगा। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमे।

जब याद किसी की आती है। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां का लिखा यह गीत था, मदन मोहन का संगीत था। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, जैसे को तैसा फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत, आर डी बर्मन का संगीत।

भूमिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे प्रीति सागर और भूपेंद्र की आवाजों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और बनराज भाटिया का संगीत। अब आइए सुनते अगला गीत, कितने 20 साल बाद फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल की आवाज में, आनंद बख्शी की ये रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, तो आइए सुनें।

20 साल बाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और श्रोताओं, इसी के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे तक

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

इसके बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने। ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो न हो गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रेफ्यू।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों पर 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर

0: और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट एक से अधिक क्षमता वाले, जबकि 387 पैनल 2-3 किलोवाट एक श्रेणी में और 103 पैनल 1 किलोवाट एक तक की क्षमता वाले हैं। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लाखों शिव भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।
1: कावड़ पटरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख घाटों, मंदिरों और संवेदनशील स्थानों पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और अत्याधुनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
2: हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार की तरह सभी शिव भक्त कावड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। बस सभी से हमारा यही अनुरोध है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सरल हो, सुरक्षित हो।
1: कावड़ यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष डायवर्जन योजना लागू की गई है। सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का ये पवित्र महीना सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और असीम शांति का संचार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पवित्र महीने में सभी के जीवन में खुशी, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं साहित्यिक कार्यक्रम में हिंदी वार्ता, सावन के झूले और कजरी गायन की परंपरा। वार्ताकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी।

सुहावन मनभावन सावन आ गया है। आकाश से बरस रही रसबूंदियों ने धरती को संतृप्त कर दिया है, उस प्यासी धरती को जो गर्मी की तपन से झुलस चुकी थी। उसका आवरण जीर्ण शीर्ण होकर पीला पड़ चुका था। प्राणियों और वनस्पतियों का हाल बेहाल था, किंतु आज रिमझिम बरसात के साथ पुरवैया और पछुआ हवा के झोंकों से शीतलता का एहसास हो रहा है। धरती रसिक्त हो नवयौवना की तरह इठलाने लगी है। भला धरती का यह हाल है तो नवयौवनाओं का क्या होगा। सावनी मदमस्ती का प्रभाव उन पर भी पड़ चुका है।

वर्षा ऋतु का माह सावन, प्रकृति का श्रृंगार सावन, मयूर युगल का नृत्य सावन, खेती का मास सावन, चतुर्मास की शुरुआत सावन, विष्णु शयन का माह सावन, देवाधिदेव महादेव का प्रिय सावन, कांवरियों की यात्रा का सावन, कृष्ण की मोहनी मुरली का महीना सावन, आनंद और उल्लास के पारावार का सावन, भाई बहन के प्यार का सावन, दाम्पत्य का प्रेम सावन। जी हाँ, यह सावन माह जीवन के हर क्षेत्र, प्रकृति, प्रेम, भक्ति, मुक्ति सभी को प्रभावित करता है। हमारे जीवन में नवरस का संचार करता है। यह रस गीतों के माध्यम से बारहमासा, चौमासा, छमासा, मलार, मोरा, चाचर, चौहट, उधवा, बरसाती, सावनी, झूला, कजरी आदि के रूप में फूट पड़ता है। लेकिन इनमें सर्वप्रिय गीत है कजरी। संभवतः सावन माह में बादलों की घनघोर काली छटा के समय इन गीतों को गाए जाने के कारण इनका नामकरण कजली या कजरी हुआ। वैसे तो भविष्य पुराण, जयद्रथ तंत्र, मार्कंडेय पुराण और आल्हाखंड में कजरी का उल्लेख मिलता है। हालांकि कजरी भोजपुरी लोक गीतों की एक शैली है। कजरी के वर्ण विषय कई हैं। प्रकृति है, परिवेश है, कृष्ण जन्म है, कृष्ण रास लीला है, कृष्ण झूला है, भोले भंडारी हैं। यही नहीं, आम जीवन में ननद भौजाई की नोक झोंक है तो श्रृंगार और दाम्पत्य प्रेम भी है। सच पूछिए तो कजरी का वर्ण विषय मूलतः नारी प्रधान है। कजरी तीन तरह की होती है, पूर्वी कजरी, बनारसी कजरी और मिर्जापुरी कजरी। पूर्वी कजरी और मिर्जापुरी कजरी शैली में लगभग एक समान होती है। बनारसी कजरी थोड़ी भिन्न होती है। देखते हैं थोड़ा तीनों कजरियों का रूप। हम पूर्वी कजरी का पहले उदाहरण लेते हैं।

वैसे तो मिर्जापुरी कजरी सबसे अच्छी मानी जाती है। कजरी के विकास का श्रेय मिर्जापुर को ही है। यहाँ कई अखाड़े हैं कजरी के, जरा इस कजरी का भी रस लें, जो हरी हरी या आरे रामा की टेक के साथ गाया जाता है कि अरे

कजरी गाई ही नहीं जाती है बल्कि खेली जाती है। यह खेल होता है झूलों पर, झूलों के प्रेम के साथ जब दिलों में सिहरन होती है तो मुख से कजरी फूटती है। झूले आज ही नहीं लगाए जाते बल्कि हमारे देश में तो लगभग 2000 वर्ष पहले भी इसका वर्णन मिलता है। वात्स्यायन ने अपने प्रसिद्ध काम सूत्र में लिखा है कि वाटिका की सघन छाया में प्रेंखा दोला यानी झूला लगाया जाता था। इसकी प्रथा वर्षा ऋतु में ही अधिक थी। सुभाषितों में तो वर्षा ऋतु के वर्णन के अवसर पर प्रेंखा दोलाओं का वर्णन पाया जाता है। आनंद से खेले जाने वाले इस खेल को दोला विलास की संज्ञा दी गई है। एक स्थान पर लिखा गया है, आनंदोल्लास के हास से जब कमल नयनाएं विद्युत गौर कांति वाली तरुणियां तेजी से झूलती हैं तो उन्हें नभ में छाए काले बादलों, उनसे हो रही चंद्रिका की वृष्टि और विद्युत तड़क का जरा भी भान नहीं होता। भान होता है सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का, अपने पीयू का, प्रिय का। और अगर दोला विलास की नायिका राधा रूप में हो तो भला उसे कृष्ण मुरारी की याद क्यों नहीं आएगी।

की डालियों पर, लेकिन आज वाटिकाएं, बाग बगीचे भला कहां बचे हैं। वन वनस्पतियां, वृक्ष सभी को तो हम काटने में लगे हैं। इससे प्रकृति ने भी हमसे मुख मोड़ लिया है। जिस खेती के लिए यह सब किया हमने, वह अब होगी कैसे। अब तो सावन की झमाझम बरसात सपना होती जा रही है। नभ मंडल में छाई काली घटा बीते दिनों की बात हो चली है। अब न वो परिवेश रहा, न आपसी प्रेम, अब झूले लगेंगे कैसे।

बीते दिनों की बात हो चली है, अब न वो परिवेश रहा न आपसी प्रेम, अब झूले लगेंगे कैसे, कजरी कैसे गाई जाएगी, क्या हमारे जीवन से रहा सहा आनंद भी गायब हो जाएगा। ऐसा न हो, आइए वृक्ष लगाएं, खेती करें, झूला झूलें, कजरी गाएं और जीवन का आनंद उठाएं।

0: इस कार्यक्रम में हमने गीत लिया था मंदाकिनी सिंह, ओम प्रकाश मिश्र,
1: राम पुकार मिश्र
0: और सुदामा राम के स्वरों में, शोध आलेख और स्वर डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी,

अभी आप सुन रहे थे वार्ता सावन के झूले और कजरी गायन की परंपरा। वार्ताकार थे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। अब आइए सुनते हैं अगली वार्ता, वाल्मीकि के राम की प्रासंगिकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजेंद्र पाठक।

महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और उनकी रचना रामायण को आदि काव्य होने का गौरव प्राप्त है। रामायण की कथा का प्रारंभ देव ऋषि नारद और महर्षि की वार्ता से होता है। चूंकि नारद समस्त लोकों में अहर्निश भ्रमण करने वाले लोक संग्रही पुरुष हैं, वे राजाओं के प्रासादों से लेकर दीन दुखियों के नित्य कुशल के आकांक्षी हैं। वाल्मीकि को ऐसे चरित्र की खोज है जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके चारित्रिक वैशिष्ट के अकलुष आकाश की छाया तले संतरस्त मानवता को शीतल छाया मिल सके। उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, चरित्रवान, वीर्यवान, धैर्यवान, सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यवान, सुंदर, मन पर अधिकार रखने वाला, अक्रोधी, कांतिवान, किसी की निंदा नहीं करने वाला तथा संग्राम में कुपित हो जाने पर देवता भी जिससे डरते हों, वैसा सर्वगुण संपन्न मनुष्य कौन है? महर्षि के प्रश्नों का देवर्षि नारद ने जो उत्तर दिया वह संपूर्ण महाकाव्य का विषय बना। उन्होंने बताया कि इस समय धरती पर इक्ष्वाकुवंशी रामचंद्र जी एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो समस्त सद्गुणों के एकत्र आगार हैं। यह बात लोक विस्तृत है कि कौशल्यानंदन राम माता के आनंद को बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने आदेशित किया कि जिस राम के चरित्र को

शरद जी ने बतलाया उसे लोक शिक्षण एवं लोक पोषण के निमित्त काव्य की भाषा में आबद्ध करें। ब्रह्मा से आदेशित एवं नारद से उत्प्रेरित वाल्मीकि ने राम के चरित्र को केंद्रीभूत कर लोक के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके मन में यह भावना थी कि संकटग्रस्त एवं संत्रस्त मानवता के समक्ष सद्गुणों से संपन्न सामर्थ्यवान चारित्रिक औदार्य के उदाहरण को रखें, जिससे चरमराती टूटती एवं बिखरती मानवता सुस्थिर हो सके। निर्विवाद वाल्मीकि के राम काल्पनिक नहीं है। यह सत्य है कि कवि कर्म की मौलिकता को ध्यान में रखकर कवि ने घटनाओं को संजोने सजाने एवं संवारने जैसे कार्य को संपादित किया। यह सत्य है कि कवि कर्म देशातीत एवं कालातीत होता है। उसकी वाणी में त्रिकाल सत्य की समस्त संभावनाएं निहित हुआ करती हैं। वह युग का दृष्टा स्रष्टा एवं चिंतक होता है। यही कारण है कि कालजयी पुरुष को वह काव्य सृजना का केंद्र बनाता है जो उसकी कथा का नायक होता है। वाल्मीकि के प्रश्नों में सांप्रतम और अस्मिन लोके शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस अर्थ को प्रतिपादित करता है कि इस समय इस धरती पर कौन मनुष्य है जो मानवीय गुणों से संयुक्त एवं सामर्थ्यवान हो। वाल्मीकि की दृष्टि में सामर्थ्यहीन सद्गुणी से संकटापन्न मानवता का कल्याण असंभव है। जब उन्होंने जाना कि इक्ष्वाकुवंशी राम समुद्र की गंभीरता एवं हिमालय की धीरता से युक्त हैं, तब उनके मन में आशा की किरणें जगती हैं कि राम के आदर्श चरित्र को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर चारित्रिक संकट को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक युग में सत्यासत्य का संघर्ष होता है। जब जब चरित्र बल की अवहेलना से मानवता कराहने लगती है, तब तब युग पुरुष का साक्षात्कार कराकर युग का मनीषी जो स्वयंभू कवि हुआ करता है बचाने को अग्रसर होता है। राम कर्मयोगी राजर्षियों की परंपरा से संपोषित इक्ष्वाकुवंशी हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कर्म की प्रधानता है। वे सूर्य की तरह निरंतर कर्म पथ के अविराम पथिक एवं शवों को विश्रांति तथा चेतना प्रदान करने वाले हैं। वाल्मीकि ने जिस राम का वर्णन किया है उस पर यदि सामान्य रूप से विचार किया जाए तो वे केवल मनुष्य रूप में वर्णित हैं। लक्षणा का प्रतीकात्मक अर्थ काव्यशास्त्र की परंपरा में गौण माना जाता है। कौशल्यानंदन राम का चरित्र लोक के समक्ष प्रस्तुत करना ही उनका लक्ष्य रहा, जिससे आने वाली मानवीय परंपरा को नवीन आलोक मिल सके। क्योंकि वे सर्वगुण संपन्न सत्यम शिवम सुंदरम से संपृक्त मानव मात्र के सच्चे आदर्श हैं। महर्षि की दृष्टि में मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी बाली एवं कुंभकर्ण, क्रोध रूपी ताड़का को न तो ज्ञान रूपी राम मार सकते हैं और न देवता रूपी राम ही। उसे तो केवल मानव राम ही मार सकते हैं जो हमारे जीवन पथ के सहचर एवं सुख दुख के साथी हैं। चरित्र धर्म सत्य सहनशीलता सदाचार सद्ज्ञान एवं सामर्थ्य के अन्वेषी वाल्मीकि की दृष्टि में राम के कार्य व्यापार लोक रक्षण एवं लोक शिक्षण के कारक हैं, जिनकी उपादेयता प्रासंगिकता कालातीत है। यह सत्य है कि धर्म सत्य एवं सदाचार के निर्वहन में अनेक बाधाएं आती हैं। श्रेष्ठ पुरुष उन बाधाओं को पार करते हुए निरंतर नैतिक मूल्यों की रक्षा में सन्नद्ध रहता है। धर्म का अर्थ होता है जो धारण किए हुए हो, अर्थात जिसके सहारे सुस्थिर रहना संभव हो। शास्त्रों में कहा गया है सत्यम वद धर्म चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। राम के जीवन आदर्श ही हैं सत्य का आचरण एवं धर्म का संपोषण। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव की शास्त्रानुमोदित वाणी को राम ने अपने आचरण में उतार कर लोक के समक्ष प्रस्तुत किया। तभी तो वाल्मीकि को कहना पड़ा रामो विग्रहवान धर्म है। श्री राम मूर्तिमान धर्म है, उनके रूप में धर्म ने शरीर धारण किया है, जिसके जीवन में कभी भी अवांछनीय कार्य व्यवहार नहीं दिखलाई पड़ते। वे युग युग तक धर्माचरण एवं सत्याचरण के उदाहरण बने रहेंगे। किशोरावस्था में ही राम के जीवन में संघर्षों का संघात पाते हैं। विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के निमित्त निशाचरों का वध, पुरुष प्रधान समाज से उपेक्षित प्रताड़ित एवं तिरस्कृत अहिल्या का चरण स्पर्श, मिथिला नरेश के यहाँ रखे हुए विशालकाय शिव धनुष का भंजन, सीता से विवाह, मार्ग में आए परशुराम का गर्भहरण जैसी घटनाएं उनके भावी जीवन की भव्यता एवं विराटता को संकेतित करती हैं। पिता की इच्छा के विरुद्ध सत्य की रक्षा के लिए एवं स्वधर्म पालन के निमित्त वनवास की अवधि को सहर्ष स्वीकार कर अंतर कलह पर विराम लगा देने की उदात्त भावना कालातीत प्रासंगिक है। यह दुस्सह वनवास के 14 वर्षों की अवधि के अंतराल में राम

ये पावन चरित्र का चरमोत्कर्ष अनुगमनीय एवं मननीय है। उनकी धर्म भार्या सीता ने समझाया कि जटाजूट एवं बलकल से सुशोभित मुनि के वेश में धनुषबाण की क्या आवश्यकता है। शस्त्रास्त्रों से सज्जित देख दुष्ट असुरों के आक्रमण की संभावना बनती है, अतएव आप इन्हें किसी ऋषि के आश्रम में रख दें। सीता की बातों का राम ने जो उत्तर दिया वह उनकी धीरता वीरता एवं लोक रक्षण की भावना का अप्रतिम उदाहरण है। राम ने कहा कि सीते, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, किंतु दुष्टों के दलन एवं सज्जनों के संरक्षण की जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे नहीं छोड़ सकता, अतएव धनुष बाण भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ हम राम को एक सच्चे लोक नायक की भूमिका में पाते हैं जो अपने दायित्व निर्वाह के प्रति सदैव सजग एवं जागरूक हैं। वनवासी राम ने असुर संस्कृति का उन्मूलन कर आर्य संस्कृति की स्थापना की। उपेक्षित जनसमूह को समुचित सम्मान देकर मैत्री की स्थापना की। दलित नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली शबरी का आतिथ्य ग्रहण कर लोक के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। सुग्रीव से संबंध स्थापित कर मदांध एवं स्वार्थांध बाली का संहार किया। वनवासी समूह की सदिच्छा सहायता एवं सूझबूझ से विपन्नावस्था में भी सेतु निर्माण जैसे दुष्कर कार्य का संपादन किया। शत्रु के भाई विभीषण को आश्रय देकर कूटनीति का परिचय दिया। रावण कुंभकर्ण जैसे दुर्दमनीय शत्रुओं का संहार कर जिस आत्मबल की पराकाष्ठा को लोक के समक्ष रखा वह मानव मात्र के लिए प्रेरणाप्रद एवं प्रासंगिक है। राम ने स्वर्णमयी लंका से जन्मभूमि अयोध्या को श्रेष्ठ माना और अविलंब माता एवं मातृभूमि के दर्शनाभिलाषी राम अयोध्या लौटे। प्रवासी भरतवंशियों के लिए राम के उपरोक्त चरित्र की प्रासंगिकता को भला कैसे नकारा जा सकता है। राज्यारोहण के उपरांत कतिपय लोप का अपवाद के कारण राम अपनी प्राण प्रिया सीता को परित्याग कर इस सत्य संकल्प की स्थापना करते हैं कि राजा का व्यक्तिगत सुख एवं उसके जीवन की शांति लोकापवाद एवं प्रजा की संतुष्टि के समक्ष तुच्छ है। तभी तो हम आज भी कहने को विवश हैं, राजा हो तो राम जैसा। लाखों वर्ष बाद भी हम राम राज्य की परिकल्पना में आत्मविभोर हो जाते हैं। राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष राम के इस पावन चरित्र की महानता एवं प्रजारंजन की भावना की प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। वर्तमान समय में विश्व के समक्ष समस्याओं का संघात सूर्यशा की तरह मुंह बाए निगल जाने को आतुर है। नैतिक मूल्यों की गिरावट एवं चारित्रिक अस्खलन ने मानव के सुंदर मुखमंडल को स्याह बना दिया है। चरित्र एवं धर्म बल के अभाव में आज मानवीय गरिमा नष्ट हो रही है। परिणाम स्वरूप हम कुंठाग्रस्त एवं आत्मघाती जीवन जीने को विवश हैं। हमारी स्वार्थपरता ने जीवन को जंजाल बना दिया है। राम का जीवन आदर्श हमारे वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन को संवार सकता है। सुसंस्कृत सुंदर एवं सुस्थिर परिवार से सुस्थिर संगठित एवं शक्ति संपन्न राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। विघटित परिवार की मानसिकता में पला एवं बढ़ा बालक राष्ट्र को संगठित कैसे कर सकता है। अतएव राम के पारिवारिक जीवन का आदर्श आज की अनिवार्य प्रासंगिकता है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में चतुर्दिक असत्याचरण एवं असत संभाषण की पराकाष्ठा हो गई है। परिणाम स्वरूप हम दिग्भ्रमित एवं आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। आत्म पोषण की भावना ने जीवन को विषवत बना दिया है। अनावश्यक वासनाओं की संतुष्टि हेतु हम सतत प्रयत्नशील हैं। परिणाम यह है कि हम सब कुछ पाकर भी रीते रीते लगते हैं। राम का जीवन दर्शन हमें यह बतलाता है कि कर्तव्यों के निर्वाह में वास्तविक एवं सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। स्वयंभू जन नायकों के समक्ष राम के चरित्र का आदर्श उनके कार्य संपादन का कौशल वाणी विचार एवं कार्यों की एकता चुनौती बनकर खड़ी है, जिसे अपनाने की त्वरा में ही सबका कल्याण समाहित है। गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था और वह सुशासन तभी संभव है जब जन नायकों के आचरण एवं वाणी में समानता हो। कर्तव्य बोध विस्मरण की इस विषम बेला में राम के जीवन चरित्र की ज्योति को अपनी अंतरात्मा में जलाकर उसके प्रकाश से स्वयं आलोकित होने एवं अपने परिवेश व परिस्थिति को आलोकित करना ही वाल्मीकि के राम की आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के तत्व को सर्वांश में आत्मसात किया और स्वजनों से कराया भी।

0: ही वाल्मीकि के राम का जीवन स्वयं में एक आलोक पुंज है जिसकी प्रासंगिकता त्रिकाल सत्य एवं सर्वकालिक है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता में वार्ता वाल्मीकि के राम की प्रासंगिकता। वार्ताकार थे डॉक्टर विजेंद्र पाठक। श्रोताओं, अब इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अब आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुन्ना सिंह की आवाज़ में ये गीत, और इसी के साथ लोकमाद्री कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का रसधार।

अवधेश पाठक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, पी के भास्कर का लिखा हुआ, असलम मिर्जापुर का संगीत। अब आइए सुनते हैं सब मतलब के मित्र रंजन दुबे की आवाज़ में अनुज तिवारी के बोल, असलम मिर्जापुर का संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा गीत लुटा देव जान एल्बम से, पंकज निराला की आवाज़ में। इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

अशोक भोसले के स्वर में जयशंकर प्रसाद की यह रचना संगीत जयदेव का था। रंग तरंग कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है महादेवी वर्मा की रचना स्वर छाया गांगुली।

0: डैडी फिल्म का ये गीत था। तलत अजीज की आवाज थी, सूरज सनीम के बोल राजेश रोशन की तर्ज थी। विविध भारती रंग तरंग, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलजार के बोल थे। वादा एल्बम से ये गीत था, संगीत उस्ताद अमजद अली खान साहब का था। अब भूपिंदर की आवाज गूंज रही है गुलजार के बोल।

0: विविध भारती एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: और अब जाने माने गायक सोनू निगम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पेश कर रहे हैं ये गाना।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात

0: में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की

आइए सुनिए यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज सोनू निगम को हम दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां। तो कुछ ऐसे गाने जो सोनू निगम के बड़े सुहाने से गाने हैं जो हमारे सफर को बनाएंगे सुनहरा।

0: दिल से फिल्म का ये गीत आपने सुना, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ें थीं। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विने धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: परदेश फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।

परदेश के बाद अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोहित्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती पर ऑल इज वेल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला।

0: डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया एक और आ गया।
2: कहाँ चल दिया बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
4: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
6: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
4: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आए हाय
4: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल चाहता है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।

0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
1: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की इबारत हमने विविध भारती के सोशल मीडिया पेज पर यानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने पढ़ भी ली है। ये इबारत है, कुछ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो राह भी दिखाते हैं। उस दिन राह दिखाने वाले एक दोस्त ने कहा था, उतना ही उपकार समझ तू जितना साथ निभा दे। बात इशारों वाली थी पर फौरन समझ में आ गई थी। कुछ बहारें बीती और इस एहसास को जीना भी पड़ गया। एक सुरमई शाम थी, उस दिन वो आखिरी बार मिली। वो जता गई कि दुनिया परछाइयों की है, भरी भीड़ में खाली तन्हाइयों की है। तब से आंखें आंखें नहीं रह गईं, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी बन गईं। प्यार करने वाले तो बद्दुआ भी नहीं दे सकते, जैसे बख्शी साहब ने लिखा था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। जिस दिल में बसा होता है प्यार, वो यही कहता है, चांद धुंधला सही ये गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया ना हो। शाम की तन्हाइयां अक्सर उसकी याद दिलाती हैं और तब होता है एहसास, मैं शायद एक ख्वाब था जिसे उसने अपनाया ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमने पोस्ट की आज की इबारत के तौर पर। इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि दो लोगों का साथ निभ नहीं पाया। एक के हिस्से में उदासी आई, शायद दूसरे के हिस्से में भी आई ही होगी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि आज की इबारत बता देती है कि गाने कौन से शामिल होने वाले हैं। बाकायदा दरअसल गानों की पंक्तियां इस कहानी की पंक्तियां जो बन गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इस गाने के

क्या तो शानदार ओपनिंग म्यूजिक है इस गाने का, जो मेरी आवाज के पीछे आपको सुनाई दे रहा है। किस फिल्म का है गाना ये तो जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइए दो बातें। एक तो ये कि किस जगह की शाम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। लोग शामें अवध और सुबह बनारस की बात करते हैं, आपके लिए किस जगह की शाम मायने रखती है? और दूसरी बात, क्या जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी एक मोड़ पर किसी का साथ छूट गया और रह गई केवल उदासी?

और जब शाम की बात चली तो बहुत सारे श्रोताओं की बातें आई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो हर शाम दिल लुभाने वाली होती है, लेकिन पुरी की जो शाम है, पुरी के समुद्र तट की शाम, सूर्यास्त का नारंगी रंग बहुत ही मनमोह लेता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे हमारे शहर उज्जैन की शाम पसंद है, क्योंकि 36 साल की सेवा के बाद मुझे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि कोच्ची की शाम पसंद है, हमारे छत से हम सूर्यास्त देख सकते थे, सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था, धीरे धीरे खूबसूरत प्रकाश फीका हो रहा था। इसके अलावा लेकिन फिल्म का ये गाना है, इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं कि गुलजार के ये बोल, सुरेश वाडकर की आवाज़, हृदयनाथ मंगेशकर का ये संगीत है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई हमारे लखनऊ की शाम का कोई जवाब नहीं है। एक और श्रोता है जो ये लिखती हैं कि जिसके साथ शाम होती है वो जब भी दूर होकर भी दूर जाकर भी दूर नहीं होता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कक्षा 8वीं की शाम बहुत अच्छी लगती थी, जब मैं एनसीसी के कैंप में भोपाल गया था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। इसके अलावा एक श्रोता की बात यह है कि उन्हें सुबह और शाम दोनों ही अपने शहर की अच्छी लगती हैं, यानी उनके शहर की ही सुबह और उनके शहर की ही शाम उन्हें अच्छी लगती हैं, घर पर अच्छा लगता है। एक श्रोता और हैं जिनका कहना है कि समंदर के किनारे जो शाम बीते, डूबता सूरज क्षितिज को सुनहरा करता है, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो हर शाम मुझे अधूरी सी लगती है। और इसके अलावा लखनऊ की शाम भूलने वाली नहीं है, ये बात भी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की बातों के बीच में एक बात ये भी है कि एक श्रोता अपने दफ्तर से कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आज की इस इबारत का हिस्सा था जिसे हमने गानों के बोलों के इशारों से सजाया था, और ये जो गाना है ये कहता है कि थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी, यानी जिंदगी की उदासी को और आंखों के भीग जाने के एहसास को ये गाना बयां करता है। पिछली बार हाल ही में किस बात पर आपकी आंखें भीग गई थी, ये बात बताइएगा। और साथ में ये भी कि इस गाने में ये जो नाजुक आवाज है, दिल में उतर जाने वाली आवाज, ये किस गायिका की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि पिछली बार तब बहुत रोना आया था जब मैं भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती की परीक्षा देने गया था और केवल 20 सेकंड से मैं रह गया था। एक और श्रोता है जो कहती है कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जुगल हंसराज वाली फिल्म मासूम और गायिका आरती मुखर्जी। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि उन्हें आरती मुखर्जी के साथ कोलकाता में चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि कुछ लोग जो अब साथ नहीं हैं उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि मैं जब भी फूलों का तारों का गीत सुनती हूं तो अपने भाई को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बचपन की याद दिलाने वाली फेसबुक पोस्ट देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि कितनी निस्वार्थ दोस्ती थी, आपस में खेलना, झगड़ना, फिर सुलह कर लेना। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिनका ये कहना है कि जिंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ इतना मुकम्मल लगता है कि इंसान वक्त को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन शाम ढलती है वो इंसान विदा हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। एक और श्रोता है कहते हैं पूछिए आज हम आ गए मैदान में। बिल्कुल जी, अब तो कठिन से कठिन सवाल पूछेंगे, आइए मैदान में। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने 1983 में आई थी फिल्म मासूम ये लिखा है। एक और श्रोता का कहना है कि माँ का साथ कुछ साल पहले छूटा, दुनिया में वीरानी छा गई, एक खालीपन है। शाम की चाय अब भी पीती हूँ पर माँ के साथ शाम की चाय की बात कुछ और थी। अब घर का वो कमरा जहाँ से माँ की रौनकें थीं, दर्द भरा सन्नाटा पसरा रहता है। किसी का साथ जब छूट जाता है तो कितना बदल जाता है जीवन। एक और श्रोता लिखते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी तो मन में ख्याल आया कि सबसे पहले गुरु तो माँ पापा होते हैं, बस सोचते सोचते आंखें भर आईं।

तमाम श्रोताओं के इस तरह के कमेंट, कुछ जज्बाती कर देने वाले, कुछ अपने दिल की बात कहने वाले, शुक्रिया आप सभी का। और पूरी इबारत की एक तरह से डोर पकड़ के जो अगला गाना हम आज के हार में मोती की तरह पिरो रहे हैं, वो मुकेश की आवाज़ वाला ये गाना है। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा।

एक श्रोता लिखते हैं कि शाम से शुरू हुई सुरमई संगीत की यात्रा, नैनों ने पानी बरसाया, दिल तोड़ दिया और दिल को समझ लिया, ये आपका अंदाज है, शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहेली फिल्म का गाना है और संगीतकार इंदिवर जी हैं। भाई संगीतकार नहीं, गीतकार इंदिवर जी हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और सहेली 1965 में आई थी, बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि उनकी लिस्ट में ये गाना शामिल था। एक श्रोता लिखते हैं कि कल रफ़ी साहब की याद का दिन है और कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए और आप इसे प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया, रफ़ी साहब की याद में कार्यक्रम ज़रूर होगा और क्यों ना आज ही से हम रफ़ी साहब के लिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी कार्यक्रम का जो अगला गाना है वो रफ़ी साहब की आवाज़ वाला ही गाना आ रहा है। एक श्रोता लिखती हैं कि प्यार कभी मरता नहीं, वो याद में बदल जाता है। याद से एक मूक ताकत हमें जीने को मजबूर करती है। कितना कुछ है दुनिया में भूलने को और कितना कुछ है दुनिया में याद करने को। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी ही मेरी सच्ची दोस्त है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अधूरी कहानी के नायक और नायिका के लिए आंखें सजल होती हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं लिखते हैं कि दिल नाजुक है और उसका भावुक होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। एक और श्रोता हैं लिखती हैं कि कुछ गाने बीतते नहीं हैं, दिल में एक टीस पैदा करते हैं और आंखें भीग जाती हैं। आरती मुखर्जी वाला गाना उन्हें कुछ इसी तरह का गाना लगता है। और अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आ रही है, साहिर लुधियानवी का लिखा एक फ़लसफ़ा। कल मोहम्मद रफ़ी की याद का दिन, 31 जुलाई का वो दिन जब रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। क्यों ना आज से ही रफ़ी साहब के प्रति अपने जज्बात का इजहार करें और आज के इस कार्यक्रम में आप बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप रफ़ी साहब की आवाज़ से, कितना मायने रखते हैं रफ़ी साहब आपके लिए।

एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में किसी आवाज से आरंभ हुई तो वो मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूँ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चित्ररेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरे डिटेल्स आपने लिख लिए हैं। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ रूह को छू लेने वाली आवाज़ है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे न धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूँ, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके शादी ब्याह हुए, भाई बहन का प्यार, सब यादें रह गईं, वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए, बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल चित्रलेखा फिल्म का ये गाना। एक और श्रोता का कहना है कि रफ़ी साहब की आवाज़ का तिलस्म कभी ख़त्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज़्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक और श्रोता का कमेंट है, सुमधुर गानों की बौछार जैसे बारिश की पहली बूंदें। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि मुकेश साहब पर आधारित दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, दो दो बार सुना पर प्यास नहीं बुझी। इस तरह के कमेंट्स हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वो गाना सुनवा रहे हैं जो इबारत में शामिल था लेकिन मुखड़े के रूप में नहीं, बल्कि गाने की बीच की पंक्तियों को शामिल किया था। फिर भी फिल्म संगीत के दीवाने हमारे श्रोता, विविध भारती परिवार के हमारे सदस्य, आप सभी ने इस गाने को पहचान लिया था। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा फिल्म का नाम और ये भी कि इस फिल्म का कौन सा गाना आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा या कौन से गाने हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना

0: भाई ये गाना कितने जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, नफनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफ़ी से हुई है। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह हैं जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बावरा का लिखा गीत, कल्याण जानी जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा, एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा जिसकी सूचना आप देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।

0: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
1: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं, और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि टेलीपैथी हो गई हर खुशी हो वहाँ हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं, और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है, आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है शाम को, मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और

श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुंदर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता हैं कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाज़ा लगाया था, इन 6 गानों का गैस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता हैं जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली, और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज़ बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज़ कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें ज़रूर खाना पसंद होता है? ज़रा बताइएगा। वो हल्की चीज़ें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में, और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहाँ जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई, कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम, जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है। बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं हो रही है।

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही, उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफ़ी साहब की आवाज़ ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता हैं कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फ़ायदा, जिससे बात ना हो दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो ज़रा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं कि भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज़ में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूँ, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब ज़रा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही के आज सीख लीजिए, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बताइए।

एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और उसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह क्या कहने हैं। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहाँ कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें क्या बात है। एक और श्रोता हैं जो ये कहती हैं कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहाँ कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता हैं वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज़ अपने घर में काम करता हूँ और महिलाओं का सहयोग करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। पकौड़ी क्या चीज़ है, आप पधारिए पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे। भाई वाह क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े। भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफ़र जो है वो गानों से ज़्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफ़र हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं, वो सिर्फ जायका लेते हैं। इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है, बहुत शुक्रिया। देखिए ज़रा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी बातें कहीं। यही तो है विविध भारती के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का मज़ा कि जिसमें आप हमारे हम सफ़र बनते हैं और भाई तमाम बातें होती हैं और ज़िंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफ़र कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ, मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कमबख्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतज़ार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मज़े से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। ज़िंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाज़त, नमस्ते।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 20.1% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। सभी मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ ही जिला पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। फर्जी पहचान पत्र के माध्यम से वोट डालने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध मतदाताओं की पहचान पत्र का QR कोड स्कैन कर ECI के ऐप पर उपलब्ध डाटाबेस से मिलान किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक वीडियो जारी कर मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में निर्भय होकर भाग लेने की अपील की है। मतदाताओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है, जिस पर निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी जा सकती है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सांसद रविशंकर प्रसाद, विवेक ठाकुर, पूर्व सांसद CP ठाकुर, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य उपभोक्ता मंत्री अशोक चौधरी और विधायक श्याम रजक ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर मत डाला। मतदान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने मतदाताओं से घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बांकीपुर की जनता से बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेने की अपील की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पहले की सभी सरकारों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं। यह पहली सरकार है जो एंटी पेपर लीक कानून बनाने की पहल की है। एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के व्यवहार और भाषा की उन्होंने आलोचना की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के कारण पटना और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। राज्य के विभिन्न भागों में भी मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के मनिहारी में सबसे अधिक 45.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीवान समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के कारण गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में सौली घाट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के दौरान चार सोमवार पड़ेंगे। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ और राजधानी पटना के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया है कि मां मुंडेश्वरी मंदिर में चतुर्मुख महादेव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वैभव सूर्यवंशी को आगामी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ईस्ट जोन टीम का उप कप्तान चुना गया है। इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी का ईस्ट जोन टीम का उप कप्तान बनना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए गर्व की बात है। दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में खेला जाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने इस उपलब्धि के लिए वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: कि नदी की आबी सतह सौली घाट में इजाफा दर्ज किया गया है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे। रियासत के मुख्तलिफ मंदिरों और शिवालयों में अकीदतमंदों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ और राजधानी पटना के मुख्तलिफ शिवालयों में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे कैमूर नुमाइंदा ने बताया है कि माँ मुंडेश्वरी मंदिर में चतुर्मुख महादेव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वैभव सूर्यवंशी को अंडा दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ईस्ट जोन का नायब कप्तान बनाया गया है। इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी को ईस्ट जोन टीम का नायब कप्तान बनाया जाना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए फख्र की बात है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
2: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
1: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
3: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
4: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
5: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स

0: के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से

0: दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
2: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
4: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
5: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
2: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरु मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

बहू बेगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में था। साहिर लुधियानवी की बोल रोशन की तर्ज थी।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी यार।

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, सहर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में ये भूमिका फिल्म का गाना था, संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का ये गाना।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हाल चाल है आरती?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: और इस
2: बारिश की दिनों में
1: बारिश का आनंद ले रही है?
2: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
1: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
2: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़ी फिसलन भरा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा हैं उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार वो किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो
1: हमें
2: बताएं।
1: अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
2: बिल्कुल।
1: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
2: बिल्कुल
1: साझा
2: कीजिए। आपने किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया, तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले हैं?
1: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
2: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें।
1: जी, और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है।
2: हाँ, ये
1: तो वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है
2: और
1: उपयुक्त टिप्स।
2: हाँ, वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना खाना बनाते समय कभी कुकर छूट गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कर रहे उससे हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं।

0: सकते हैं उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे
1: जी. और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है. हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
0: अंतर्राष्ट्रीय जो हाँ
1: पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है. तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते
0: बिल्कुल,
1: हैं.
0: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना
1: जी,
0: सखा हैं,
1: हमारे साथी है. उनके नाम में ही सखा है, सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी
0: मित्र
1: हैं.
0: ये हमारा दिवस है, समझिए
1: जी, हम सभी का दिवस है
0: जी, बिल्कुल.
1: और आप क्या करें.
0: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना,
1: सुन लेते हैं गीत.
2: यूं ही तुम मुझसे

0: थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना, फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
1: हाँ
0: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
1: जी
0: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं।
1: वो है दोस्ती का रिश्ता।
0: बिल्कुल, दोस्ती का रिश्ता है।
1: और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
0: बिल्कुल। और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है। अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे? तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
1: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो
0: बिल्कुल
1: फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा, है ना।
0: बिल्कुल। और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है, ये बहुत भाग्य की बात है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती है। ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी, और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
1: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
0: बिल्कुल।
1: क्या
0: और
1: बात
0: हमारे
1: है।
0: एक साथी कहते हैं सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
1: संबल मिलता है।
0: बिल्कुल, तो
1: कि
0: हमें लगता है कि कोई है साथ में।
1: कोई है कि अरे मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता
0: बस
1: है
0: ये
1: या
0: कि मैं
1: चिंता
0: हूं
1: क्यों
0: ना जो
1: करती है।
0: शब्द होते हैं
1: जी,
0: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है। यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है। ये कोई व्यापार नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध है। यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत
0: बहुत
1: सुंदर बात
0: बहुत बहुत
1: लिखी है।
0: अच्छी बात कही।
1: इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
0: हाँ तो एक गीत सुने
1: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है। जी
1: बिल्कुल, और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की
0: जी
1: और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो
0: जी
1: सच में बहुत ज़्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी
1: वो
0: उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं,
0: जी
1: समर्पित कर देते हैं।
0: जी तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी
1: बुधरी दाती,
0: दाती। वो जी
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर बुधरी दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी दाती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गांव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल, और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलना खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस
0: जी
1: समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र
1: बिल्कुल
0: में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल, और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गईं।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने

0: बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुधरी दादी ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुधरी ताती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया।

0: महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहाँ पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था।
0: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गाँवों तक पैदल पहुंची, वहाँ के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक संदेश सुनते
1: हैं। हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठी नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए
0: मुझे
1: नहीं
0: ऐसा
1: बोल
0: लगा
1: रहे
0: रूठ
1: थे रूठे नहीं है, और क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि
0: गई
1: चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा।
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागना ही पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया चलो
0: और
1: यहाँ
0: फिर
1: से।
0: फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल।
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत
1: बिल्कुल।
0: दुखदायक हो
1: और
0: जाएगी।
1: पानी भर गया अगर, और अब ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया, तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो।
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं, और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें। तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है, और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई।
1: इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है ना। एक
0: बिल्कुल।
1: उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना। जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी, एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना
0: जी
1: धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं जैसे।
0: हरी हरी कोपले आ जाती है,
1: बिल्कुल।
0: और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है।
1: बिल्कुल। इतना अच्छा आंखों को लगता है ऐसा, दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो भी मुस्कुराने लगती है कि चलो हम पे
0: बिल्कुल
1: अब।
0: हमारी
1: हाँ
0: तरह।
1: बिल्कुल। और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं, और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती। बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती
1: सच
0: है।
1: में। अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना तो, या ट्रेन से भी जा रहे हैं तो, ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो पूरी धरती पे ना,
0: बहुत सुंदर।
1: बहुत सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक
1: अंतराल।
0: के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सखी सहेली।
1: सहेली।
0: और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती।
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी, ऐसी जगहों पे जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयाँ, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: बिल्कुल। और जो
0: इसलिए
1: जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है ना वो तो बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है। और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने, तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है। तो
1: बिल्कुल,
0: भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है, पर
1: बाद में
0: हम
1: बना लीजिए अगली बार।
0: हाँ, क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल। और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाए, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए, और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिएं, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल
0: होता
1: बहुत,
0: है।
1: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई जारी की गई है तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ सुना ली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई, मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफ़ी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है।
0: बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नज़ारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियाँ, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज़ में जा रहे हैं, से ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहाँ पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना

0: जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है, और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
1: ये तो है। और एक हमारे साथी हैं जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं, और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए हैं, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
0: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद ज़रूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। ज़रूरी सावधानियाँ, हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही ये कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किल्ड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताज़ा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
1: एक
0: लिखी।
1: हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई। इन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
0: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज़्यादा किसी चीज़ की चिंता नहीं करना
1: बिल्कुल
0: चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
1: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी तो होती ही है, साथ में परिवार की है, जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं,
0: जी
1: तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो
0: जी
1: चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सकें, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन ज़रूर करिए।
0: और सबसे ज़रूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह, ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती? एक गाना
1: एक
0: सुन ले।
1: गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका। मैंने
0: ओ
1: पलट कर देखा तो बोला, चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचार आया कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
0: वो
1: ही
0: तो है,
1: करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत
0: सीखते हैं
1: सही बात
0: जो,
1: लिखी है
0: बिल्कुल
1: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी हुई थी उसी में थूकना है। और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
0: बिल्कुल.
1: जरूरी है। थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं. मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहाँ तहाँ थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज़ होती है जिसे वो आपके मुँह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुँह में सूजन हो जाती है और आपका मुँह सूज जाता है, यही सज़ा दी जाती है. तो ये इस तरीके की चीज़ें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही हैं इस तरह की चीज़. लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है, तो
1: जी
0: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझ, ये
1: जी
0: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है. तो ये इस तरीके की चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
1: वैसे
0: हमें
1: ही अपने घर के
0: सड़क को,
1: बाहर भी स्वच्छता का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है।
0: इसी तरीके की जब जब इस तरह की जब सज़ा मिलती है या इस तरह की चीज़ें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज़ को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें. तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे.
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथी लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज़ को नहीं होना चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पर चल रहे हैं लोग उन पर भी कभी कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता है कभी कभी इस तरह. तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना
1: कई बार
0: चाहिए.
1: जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं, पर जरूरी नहीं नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं। तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और
0: बिल्कुल
1: एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं। गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं, जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं। और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है, क्योंकि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
0: बिल्कुल
1: कहना ही
0: बिल्कुल.
1: चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है. जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है. तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें.
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने के

0: सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहाँ पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है। और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली, दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपये का दंड किया, का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
0: और अब गीत सुन ले।
1: गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखिए अपने हाथ को, और वहाँ पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज़ लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम, और डॉक्टर पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियाँ सट जाती हैं या पकौड़ियाँ तलते समय उंगलियाँ तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ़ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज़्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास
0: बिल्कुल,
1: जाना ज़रूरी है।
0: ज़्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल
0: सीधे
1: तुरंत ही
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: के
1: के
0: पास
1: पास
0: जाएं।
1: जी।
0: और छोटी मोटी चीज़ों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज़ तरह की कोई चीज़ आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह हैं, इनको
1: जी
0: काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना

0: अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ़ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना ज़रूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ़ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं है छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई, अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
0: और आप क्या करें,
1: ये गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे हैं। सर
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है बड़ोदिया बल्लर और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 25 किलोमीटर, गाँव दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ जब हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते?
1: सर खेती अपने यहाँ होती है थोड़ा इनकी।
0: नदी अद्दी कोई?
1: नदी नहीं दिख रही यहाँ पे सर।
0: तलाव?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बह थे कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, सर दूर पे तलाव है यहाँ से।
0: हो बाकी का हालचाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना है आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी।
1: सर आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था, सर आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ।

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी हैं, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के फनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं।
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइशें आती
1: नहीं
0: हैं?
1: सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है।
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो
1: जी सर
0: बताइए
1: जी,
0: क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या
1: हाँ,
0: गतिविधियां चल रही
1: अभी
0: हैं?
1: धान का रुपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़?
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़ जी
0: किस किस
1: में।
0: तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हाल चाल है
1: सर? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल। अच्छा। कर रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी। आज आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप, शाम को हवा महल में तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: का नाम डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी दिन के सर अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागन सा रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: जोर समझ रहा है नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरक से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है।
1: हाँ, आज धूप भी है। हाँ
0: कश्मीर में बारिश
1: जी,
0: का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हर
1: हाँ,
0: महीने होता
1: बीच
0: है।
1: बीच में होते हैं। हाँ
0: सोनमर्ग
1: जी,
0: तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की,
0: जी जी
1: रजला।
0: आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख
1: हाँ
0: जाने
1: जी,
0: के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी
1: बस
0: चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है।
1: हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहां घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर,
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहां से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज आप?
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं बैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बरसे, बिजली चमक जिया डरात बादल रे। ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी सर। सर
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से, पृथ्वीराज
0: जी बोलिए बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है सर।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी, टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर। देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे
1: जी
0: किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी।
0: नवंबर से फरवरी। और दिन का कौन सा वक्त?
1: दिन का वक्त वही सर, 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12
1: जी
0: में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर, उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको
1: जी
0: सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर, यहाँ तो सबसे अच्छा दृश्य बांधवगढ़ का एरिया है सर। उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर। और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
0: मोर? अरे वाह
1: जी
0: वाह
1: जी
0: वाह, बहुत ही बढ़िया। यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
1: जी प्रकृति का संदार है सर यहाँ
0: और आपका काम क्या है भाई
1: सर। हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
0: उस इलाके में?
1: जी,
0: तो मोटर बाइक से घूमते हैं? अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर। हमें सूचना, ज्ञान, मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं। और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई।
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, उसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हाँ
0: मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो
1: जी,
0: टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी ज़रूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इससे खरीदे यहाँ, उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये

0: भेजेगा तो वो सही होना चाहिए
1: जी। और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
0: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं इसमें, मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाला छोटे वाले पूर्व मतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पूर्व मतन होता है ना उसमें तकरीबन 4 महीने 3 महीने 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
1: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हम बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: कुमार सानू की आवाज में, फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
1: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: दिलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर,
0: बारिश
1: बादल सारे
0: बारिश
1: हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सर से मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर पिकनिक मनाने लोग गए थे।
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: जी सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या बात
1: मालूम नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये, बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02268607 0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002466 यानी 02240024662। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने

0: कल पारित कर दिया था। भोजनावकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों, युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्न पत्र लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को लाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो और जॉर्जिया के राजदूत बख्तंग जाउशविली से मुलाकात की। बैठक में परिकल्पित लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बख्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाश अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और कई आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटकों से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन लीग ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई है। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। नीरज 5वें, रोहित और यशवीर 9वें और 10वें स्थान पर रहे। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। आइए श्रोताओं, सबसे पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप आनंद लेंगे भोजपुरी लोकगीत का, कलाकार होंगे भरत सिंह भारती। शाम 6:05 पर हमारे श्रोता सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 5:10 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे बेहतरीन भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदन का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भक्ति गीत।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान साथियों का कार्यक्रम। किसानवाणी प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीत।

शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से। 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे ई मन पसंद कार्यक्रम के शेष गाने।

8:30 पर आप सुनेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का तीसरा संस्करण। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा।

9:15 पर आप सुनेंगे गज़लों का कार्यक्रम महफिल। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:15 पर आप सुनेंगे हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप आनंद ले सकेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने का। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत पश्चात अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

अभी हम एक नज़र डाल रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। वंदन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीत। पहला भक्ति गीत आइए सुनते हैं अरुण कुमार की आवाज़ में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

संजय गिरी की आवाज़ में अभी आपने सुना यह भक्ति गीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम भक्ति गीत पुरुषोत्तम जोशी की आवाज़ में।

पुरुषोत्तम जोशी द्वारा गाए इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी रवि भूषण। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और आज से शुरू हो रहे हैं सावन महीने का आनंद अवश्य लेंगे। श्रोताओं, सावन का यह जो महीना है यह प्रकृति का एक अनुपम उपहार है जो हमें मिला है। सावन का महीना भारतीय संस्कृति और प्रकृति दोनों में से एक विशेष स्थान रखता है। यह वर्षा ऋतु का यानी बारिश के समय का वह समय है जब धरती अपनी प्यास बुझाती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। जहाँ देखो पेड़ पौधे हरे भरे

0: नज़र आते हैं, आँखों को एक अलग सुकून मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है, झूम उठता है मन। सावन का आगमन न केवल मौसम में बदलाव लाता है, बल्कि यह लोगों के मन में भी नई उमंग और उत्साह भर देता है। सावन का महीना अपने सबसे सुंदर रूप में इस महीने में होती है, जब पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और फूल खिल उठते हैं, झूम उठते हैं, आकाश में काले बादल छाए रखते हैं और रिमझिम बारिश की बूंदें धरती को शीतलता प्रदान करती हैं और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलती है। सावन का महीना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान भक्तजन उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और वे शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सुनते हैं एक बेहतरीन गीत। यह देशभक्ति गीत है, शंकर महादेवन और प्रसून जोशी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मणिकर्णिका।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

तुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी श्रोताओं। हम जब छोटे थे और विद्यालयों में पढ़ते थे और हिंदी का जब नाम आता था और कहानियों की जब चर्चा होती थी तो महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की बात अवश्य होती थी। एक ऐसे साहित्यकार जिनका साहित्य छोटे विद्यार्थी से लेकर एक बड़े तबके के लोगों तक पसंद किया जाता था। उनके कहानी में मार्मिकता होती थी, संवेदनाएं होती थी, उसे पढ़कर लोग भावुक हो उठते थे। ऐसे ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया है। आज आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 31 जुलाई यानी कि कल उनका जन्मदिवस है। भारत के महान उपन्यासकार माने जाने वाले, जिनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। यह कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। बहुत सारे लोग मुंशी प्रेमचंद के वास्तविक नाम के बारे में भी नहीं जानते हैं। हम आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वह था धनपत राय श्रीवास्तव। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक, उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। और एक के सबसे महत्वपूर्ण बात जो यह है उनके बारे में कि वे एक के संवेदनशील रचनाकार थे। उनकी कहानियों में संवेदनाएं मिलती थी। वे एक संवेदनशील रचनाकार थे। कहानी में, पात्रों में वो ऐसे डूब जाते थे कि पढ़ने वाले को ऐसा लगता था कि वो कहानी का एक किरदार है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थीं। प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता था। प्रेमचंद का कुल दरिद्र कायस्थों का था, जिनके पास करीब 6 बीघा जमीन थी और जिनका परिवार बड़ा था। प्रेमचंद के पितामह मुंशी गुरु सहायलाल पटवारी थे। उनके पिता

मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे और उनका वेतन लगभग 25 रुपये मासिक था। उनकी माँ आनंद देवी सुंदर, सुशील और सुघड़ महिला थीं। जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे, उनका विवाह हो गया। वह विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था। सन 1905 के अंतिम दिनों में आपने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। यह कहा जाता है कि दूसरी शादी के बाद इनके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। इनके लेखन में अधिक सजगता आई, प्रेमचंद की पदोन्नति हुई तथा यह स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। उनके शिक्षा के बारे में हम जान लेते हैं कि गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक की। जीवन के शुरुआत में ही इन्हें गाँव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता था। इसी बीच में इनके पिता का देहांत हो गया। प्रेमचंद को पढ़ने का बहुत ही शौक था। आगे चलकर वह वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने इन्हें तोड़ दिया। प्रेमचंद ने स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन ले लिया और उसी के घर में एक कमरा लेकर रहने लगे। इनको ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। 5 रुपये में से 3 रुपये घर वालों को और 2 रुपये से प्रेमचंद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। प्रेमचंद महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेमचंद ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्सियन और इतिहास विषयों से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की थी। उनका साहित्यिक जीवन बेहद समृद्ध रहा है और बहुत वर्षों तक के उन्होंने लेखन कार्य किया। उनका नाम साहित्य से जुड़ा। उन्होंने वास्तविक जीवन में बहुत संघर्ष किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने नवाब राय अपना नाम अपनाया। बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे। जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया, तब उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। बाद का उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी काल में प्रेमचंद ने कथा साहित्य बड़े मनयोग से पढ़ना शुरू किया। एक तंबाकू विक्रेता की दुकान में उन्होंने कहानियों के अक्षय भंडार तिलिस्मे होश रुबा का पाठ सुना। इस पौराणिक गाथा के लेखक फैजी बताए जाते हैं, जिन्होंने अकबर के मनोरंजन के लिए ये कथाएं लिखी थीं। एक पूरे वर्ष प्रेमचंद ये कहानियां सुनते रहे और इन्हें सुनकर उनकी कल्पना को बड़ी उत्तेजना मिली। कथा साहित्य की अन्य अमूल कृतियां भी प्रेमचंद ने पढ़ी। इनमें सरासर सरसार की कृतियां और रेनाल्ड की लंदन रहस्य भी थी। प्रेमचंद की रचना दृष्टि कई साहित्य रूपों में अभिव्यक्त हुई। वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में उस समय का इतिहास बोलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत माता पर बल देते हैं। प्रेमचंद की कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय संस्मरण, अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की, किंतु प्रमुख रूप से वह कथाकार हैं। उन्हें अपने जीवन काल में ही उपन्यास सम्राट की पदवी मिल गई थी। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र की रचना की। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी और न ही विचार और न ही प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था, सिवाय बांग्ला साहित्य के। उस समय बंकिम बाबू थे, शरदचंद थे और इसके अलावा

टॉलस्टॉय जैसे रूसी साहित्यकार थे, लेकिन होते होते उन्होंने गोदान जैसे कालजयी उपन्यास की रचना की जो कि एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्म शती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। इसके बरामदे में एक भित्ति लेख है, यहाँ उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है जहाँ उनकी एक अवक्ष प्रतिमा भी है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिससे लोग अनभिज्ञ थे। उनके ही बेटे अमृत नायर ने कलम का सिपाही नाम से पिता की जीवनी लिखी है। उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी व उर्दू रूपांतर तो हुए ही हैं, चीनी, रूसी, अनेक विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियाँ लोकप्रिय हुई हैं। उनकी कहानियाँ, उनकी किताबें आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक है और आज भी हर व्यक्ति जो साहित्य में थोड़ी भी रुचि रखता है मुंशी प्रेमचंद की किताबों को अवश्य पढ़ता है, और जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद की किताबों को पढ़ा है वे मुंशी प्रेमचंद की साहित्य को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन के कई अद्भुत कृतियाँ लिखी हैं। तब से लेकर आज तक के हिंदी साहित्य में ना ही उनके जैसा कोई हुआ है और ना ही कोई और होगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों के एक वर्ष को छोड़कर उनका पूरा समय बनारस और लखनऊ में गुजरा, जहां उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपना साहित्य सृजन करते रहे, और अंततः 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर रोग से उनका देहावसान हो गया। हम यही कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जैसा साहित्यकार इस देश में न कभी हुआ है और न कभी होगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत। आवाज़ें हैं यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी दे दें एक के सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और जो काफ़ी सफल योजना मानी जाती है, जो हमारी महिला और बालिकाओं से संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी और जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है। सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को कवर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ 100 जिलों का एक पायलट जिले के रूप में चयन किया गया है। श्रोताओं, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पर सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह कि बढ़ती जनसंख्या के बावजूद लड़कियों का अनुपात घटता जा रहा है। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार हर 1000 लड़कों पर 927 लड़कियाँ थीं, हालांकि 2011 की जनगणना में ये आंकड़े 943 लड़कियों पर आए। क्या आपको पता है कि यूनिसेफ ने भारत को बाल लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो में 195 देशों में से 41वां स्थान दिया है, यानी कि हम लिंग अनुपात में 40 देश से पीछे हैं। योजना का उद्देश्य है कि पक्षपात लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना। बेटियों को पढ़ाना बेहद जरूरी है, बेटियों की शिक्षा में अगर किसी भी तरह की कमी होती है तो सरकार उसके लिए उचित कदम उठाना चाहती है। बालिकाओं को शोषण से बचाना व उन्हें सही गलत के बारे में अवगत कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं वितरित करने में सुधार करना है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि महिलाओं के साथ

हो रहे भेदभाव और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रोका जा सके। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। बालिका और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन करना, इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना और उसे संशोधित करते रहना सुशासन का पैमाना बनेगा। निम्न लिंगानुपात वाले जिलों की पहचान कर ध्यान देते हुए गहन और एकीकृत कार्रवाई करना, सामाजिक परिवर्तन लाने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थानीय महिला संगठनों, युवाओं की सहभागिता लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक की भूमिका में ढालना, जिला, प्रखंड, जमीनी स्तर पर अंतर क्षेत्रीय और अंतर संस्थागत समायोजन को सक्षम करना है। महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों और अपराधों को रोकथाम, महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना है। तो श्रोताओं, इसी के साथ है आज का यह एपिसोड यहीं संपन्न होता है। युवाणी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर आप सबों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और श्रोताओं, जाते जाते सावन पर्व की आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना और ढेर सारी बधाइयाँ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंदे एक बेहतरीन भोजपुरी लोकगीत का, और कलाकार हैं भरत सिंह भारती और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे भरत सिंह भारती। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है और आलोक कुमार सुंदरम से भोजपुरी में समाचार सुनी। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव खातिर कड़ा सुरक्षा के इंतजाम के बीच मतदान भइल है। चुनाव आयोग से मिलल जानकारी के मुताबिक सांझ 5 बजे तक लगभग 33.6% मतदाता लोग अपना मताधिकार के प्रयोग कैले बा। हमनी के संवाददाता बतौले हैं कि हर पोलिंग बूथ पर वोट डाले खातिर लोगन के लम्हर कतार देखल गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ ही जिला पुलिस बल के जवानन के तैनात कल गई है। फर्जी पहचान पत्र से वोट डाले के कोशिश करे वाला असामाजिक तत्वन पर कड़ा नजर राखल गई है। भारत निर्वाचन आयोग एगो वीडियो जारी करके मतदाता लोग से लोकतंत्र के इस पर्व में निडर होके मतदान करे के अपील कैले रहल ह। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, राजद के रेखा कुमारी आ जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच मानल जा रहल बा। सांसद रविशंकर प्रसाद, विवेक ठाकुर, पूर्व सांसद सीपी ठाकुर, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी आ विधायक श्याम रजक अपन अपन पोलिंग बूथ पर जाके वोट डलले हैं। राज्यसभा में आज पेपर लीक रोके खातिर लावल गैल विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर चर्चा कैल गई है। एकरा से पहले कार्मिक लोक शिकायत आ पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन में ई विधेयक पेश कैले हैं। ई विधेयक काल लोकसभा में पास कर दिया गया रहे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता

0: राज्यसभा सांसद संजय झा आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहले हैं कि पहले के सब सरकारन में पेपर लीक के घटना होत रहल बा। ई पहली सरकार बा जे एंटी पेपर लीक कानून के बनावे के पहल कैले बा। सारण जिला में मवेशी सबके खुरपका मुपका बीमारी से बचावे खातिर किसान लोग के जागरूक कैल गेल ह। जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम के दौरान भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार किसान लोग के मवेशियन के देखरेख खातिर टीकाकरण आ बचाव के और दोसर उपायन के जानकारी दिले हैं। सावन के पावन महीना आज से शुरू हो गई बा। इबेर सावन में चार गो सोमवार पड़ी। राज्य के अलग अलग मंदिर आ शिवाला सब में भक्तन के भारी भीड़ देखल जा रहल बा। सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ आ राजधानी पटना के कई गो शिवालय में भारी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ावे पहुँच रहल बाड़े। कैम्बूर संवाददाता बतौले हैं कि माँ मुंडेश्वरी मंदिर के चतुर्मुख महादेव के जलाभिषेक करे खातिर भक्तन के भारी भीड़ उमल रहल बा। सोनपुर में विख्यात सावनी मेला के आज से शुरुआत हो चुकल बा, जौन 28 अगस्त ले चली। पूरा सावन बाबा हरिनाथ के मंदिर आसपास के भक्तन के भारी भीड़ उमड़ल रही। मानसूनी गतिविधि बढ़े के चलते पटना और आसपास के इलाका में बरखा बरस रहल बा। राज्य के अलग अलग हिस्सा में भी मध्यम दर्जा के बरखा दर्ज कइल बा। मौसम विभाग आपन पूर्वानुमान में कहले बा कि आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आ सीवान समेत राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्सा में कई जगह तेज हवा के साथ बरखा हो सकत बा। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ल बा, जबकि पटना के दीघा घाट, गांधी घाट आ हाथीदह में नदी के जलस्तर स्थिर बा। वैभव सूर्यवंशी के आवे वाला दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता खातिर इस जोन टीम के उपकप्तान चुनल गइल बा। इतना कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी के इस जोन टीम के उपकप्तान बनल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के गर्व के बात बा। दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में खेलल जाई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ई बढ़ंती लागी वैभव सूर्यवंशी के बधाई आ शुभकामना दिले बाड़े। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: भोजपुरी समाचार बुलेटिन अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार श्रोता भाई बहन, आप सुन रहल बानी आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम किसानवाणी। आप आज आपके साथ हम बानी सुगिया बहन और हमारा साथ बानी रज्जू भाई। नमस्कार रज्जू भाई।
1: नमस्कार सुगिया बहन, सब श्रोता भाई बहन लोगों के भी रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार।
0: देखिए रज्जू भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है
1: जी,
0: जोन हमनी के मित्रता के महत्व और

0: आपसी विश्वास, प्रेम तथा सहयोग के संदेश देवेला। मित्रता जीवन के एक अनमोल रिश्ता है। ई ऐसन संबंध है जो न केवल खुशी के बढ़ावेला बल्कि कठिन समय में भी हमनी के संबल बनावेला, और एक सच्चा मित्र हमनी के सफलता में खुश होला और हमनी के परेशानी बिना कोनो लड़ाई झगड़ा के खत्म भी हो जाला।
1: देखिए, मित्रता एगो ऐसन शब्द बा जहाँ की ऊंच नीच, धनी गरीब, इस सब के भेदभाव खत्म
0: हो जाला।
1: अब रह गई कि आज अंतर्राष्ट्रीय जौन मित्रता दिवस बा, तो एकरा में एकर निर्माण यही से भई रहे कि हमनी के जितना भी विश्व में देश बाण, यदि कोई संगे कोई समस्या बा तो ओकरा के मित्र के नाते वो समस्या के आदमी सुलझा लिहन आ मित्रवत ओकरा से बात करिहन। मित्रवत बात करे के मतलब ये भी बा कि हम कोनो बात पर अडिग ना रहब, बल्कि आपसी प्रेम
0: तालमेल
1: से वो समस्या के निदान कर ली। यही तरह से जैसे हमनी के देश या परिवार में भी मित्र बना के चलल जाला, परिवार में भी कोशिश करे के चाहिए कि जे भी हमनी के संबंधी बा ओकरा से भी मित्रवत व्यवहार करें,
0: रूखा व्यवहार ना दिखाई।
1: इसे कहल गइल बा कि जब इतने ना मतलब कोई भी यदि पुत्र से आना हो गेल तो पिता के भी चाहिए कि ओकरा से हम मित्रवत व्यवहार करें। मित्रवत के मतलब बा कि बिना कोनो भेदभाव के, बिना कोनो असमंजस के हम ओकरा से अपन मन के बात कह सके।
0: जब हमनी के बात रुआ कहनी गार्जियन के, पिता पुत्र के, तो माता के और बेटी के भी संबंध वही तरह से रहे के चाहिए। एकरा से हो लगा कि बच्चा अपना मन के बात अपना गार्जियन के बता सकेला, मित्रवत हमनी के व्यवहार रही तब, या कोई भी होके घर में
1: मतलब विरोध तब होला जब हम अपना मन में बात रखले बनी, आ धीरे धीरे वो बहुत बड़ा विकराल रूप धर लेला।
0: मतलब एक तरह से मानी कि बच्चा के दिल में या गार्जियन के दिल में जखम जैसा बन रहेला,
1: तो ओमे हमनी के खुल के बातचीत यदि करत अंजा ओकरे वही जे मित्रता सार्थक बा। मित्रता के बारे में हमनी के धर्म ग्रंथ में भी कहल गइल बा कि कृष्ण आ सुदामा के जौन दोस्ती रहे, ई आज भी मानल जाला कि ओइजा कोई भेदभाव ना रहल। मतलब खुद भगवान भी एगो साधारण जौन भिखारी के रूप में सुदामा जी प्रस्तुत भइलन, उनका संगे अपन समान अधिकार के, समान कर्तव्य के पालन करके वहाँ के अपना मित्रता के उजागर कैनी। तो यही तरह से आज हमनी के सीख लेवे के चाहिए ए दिन पर कि हमनी के भी अपना गाँव में, अपना समाज में, अपना परिवार में मतलब सब कोई से मिलजुल के प्रेम पूर्वक रह के लेबे हमनी के सोचे के चाहिए, रहे के चाहिए। तो चले के अब अपनी के हमनी के अपना
0: विषय पर
1: तो देखिए, अब हम चाहते
0: हैं कि आज हमनी के अपना कार्यक्रम में का का चीज के जानकारी लिहल जाए।
1: देखी सुगिया बहन, सबसे पहले नु हमनी के अपना किसान भाई खाती कृषि पर आधारित खबर सुनल जाए आज की खबरों के अंतर्गत। फिर आज की खबरों के अंतर्गत खबर सुनला के बाद आज की बातों में एगो हमनी के भेंट वार्ता सुनल जाए, जाना में कि हमनी के धान के खेती पर सुनल जाए एगो भेंट वार्ता, जाना में कि वार्ताकार बानी ब्रज किशोर बिमल आ यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी
0: जी।
1: फिर हमनी के नू नई उम्र की नई फसल में चलल जाए, जहाँ कि अभी हमनी के खेती बाड़ी में बैगन के खेती पर हमनी के चर्चा कैल जाए। फिर आज के नसीहत में हमनी के अभी गांव घर में पूरा धान के रोपनी चल रहा है,
0: पूरे जोर शोर पर,
1: तो एकरा पर हमनी के बातचीत कैल जाए कि धान के जौन फसल बोआ गइल बा, रोपा गइल बा, ओकरा में कितना पानी रहे के चाहिए, एकरा पर भी हमनी के एक नजर डालल जाए। तो अब आई हमनी के एकरा बाद मौसम पर आधारित हमनी के किसान भाई के सलाह भी दिया जाए कि अभी मौसम के हिसाब से उनका खेती में काका करेगी
0: जी, जी,
1: जी। आई अब हमनी के कृषि पर आधारित खबर सुनल जाओ आज की खबरों के अंतर्गत
0: जी। देखिए खबर बा, पहले मुख्य खबर सुन जान लिहल जाओ
1: जी।
0: बिहार में धान की रोपनी अभी भी अधूरा बा, मौसम विभाग के भारी वर्षा के चेतावनी बा, मूंग खरीद के लेके किसान के राहत मिलल, किसान के विरोध प्रदर्शन जारी भइल, किसान खातिर कुछ सलाह बा। और अब समाचार विस्तार जानल जाओ, बिहार में धान के रोपनी के लगभग 38% कार्य अभी भी बाकी बा, कम वर्षा और अनियमित मानसून के कारण कई जिला में किसान चिंतित बनी जा, कृषि विभाग ए किसान के वैकल्पिक फसल पर भी विचार करे के सलाह देले बनी जा। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश के कई हिस्सा में अगला कुछ दिन

0: दौरान भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के संभावना जतैले बा। किसान के खेत में जल निकासी के उचित व्यवस्था रखे और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कृषि कार्य करे के सलाह दिहल गई बा। मध्य प्रदेश सरकार किसान के मांग के देखते हुए मूंग के 60% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करे के घोषणा कैले बा। साथ ही ई टोकन व्यवस्था के फिलहाल स्थगित कर स्लॉट बुकिंग के अवधि बढ़ावल गई बा। भोपाल में किसान अपना विभिन्न मांग के लेके प्रदर्शन कैनी। किसान फसल खरीद उचित मूल्य और अन्य कृषि संबंधी समस्या के समाधान मंगले बनी जा। कृषि विशेषज्ञ धान मक्का और दलहनी फसल में जल भराव से बचाव, समय पर खरपतवार नियंत्रण तथा संतुलित उर्वरक के उपयोग के सलाह देले बनी जा। बदलत मौसम के देखते हुए किसान के नियमित रूप से मौसम आधारित कृषि परामर्श के पालन करे के आग्रह कैल गई बा। ये रहे हमनी के कृषि संबंधित समाचार।
1: देखी बहुत निमन समाचार रहल। अब रह गई कि देखी एक घड़ी हमनी के गाँव घर में जे भी किसान भाई लोग बानी इ धान के रोपनी कर रहल बानी। आ बहुत जगह तो धान के रोपनी हो भी गई बा, लेकिन जहाँ पटवन के साधन नहीं खे वहीजा अभी भी बहुत सा जगह धान रोपे के अभी काम बाकी बा। तो ये रोपनी में हमनी के कैसे विशेष ध्यान देवे के चाहिए, कैसे अधिक उत्पादन हुई, एकरा खातिर हमनी के आई एगो भेंटवार्ता सुनल जा। भेंटवार्ताकार बानी ब्रज किशोर बिमल, आ यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, ताई हमनी के सुनल जा।
2: किसान भाइयों, धान की खेती का समय चल रहा है और धान की उन्नत खेती कैसे की जाए इस बारे में जानने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजकिशोर बिमल। आप वरीय वैज्ञानिक हैं प्रसार के सिंचाई अनुसंधान केंद्र विक्रमगंज में। तो ब्रजकिशोर बिमल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि चूँकि किसान भाई बिचड़े डाल चुके हैं, रोपनी का समय आने वाला है, कब से कब रोपनी करनी चाहिए?
3: इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसान भाई का रोपनी का समय आ गया है। जो लंबी अवधि वाले प्रभेद हैं, खासकर नाटी मसूरी जो 155 दिन में तैयार होते हैं, उनकी बीज तो लगभग रोहिणी नक्षत्र में किसान भाई डाल चुके होंगे। और ऐसा अगर डाल चुके हैं तो लगभग रोपनी का जो पौधे का उचित समय है, पौधे की जो उम्र है, वह लगभग 25 से 30 दिन के अंदर रोपनी अवश्य हो जानी चाहिए। इसलिए कि जितना जल्दी रोपनी होगी उतना ज़्यादा उसमें कल्ले निकलेंगे और उससे ज़्यादा उसका उत्पादन असर करता है। इसलिए रोपनी का समय जो लोग रोहिणी नक्षत्र में डाल चुके होंगे बिया, जून के अंतिम सप्ताह से और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जितने भी लंबी अवधि वाले प्रभेद हैं उनकी रोपनी हो जानी चाहिए। और रोपनी में विलंब होने से उसमें पौधे में कल्ले की संख्या घट जाती है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए जितने भी लंबी अवधि वाले प्रभेद हैं उनकी रोपनी जून के अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हो जानी चाहिए।
2: अच्छा, रोपनी हो जानी चाहिए, लेकिन रोपनी की विधि क्या है, कैसे किसान भाई रोपें? क्योंकि हमारे यहाँ तो पारंपरिक ढंग से खेती होती आई है अब तक, और कई किसान भाई हालांकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो किसान हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आप, किस ढंग से रोपनी की जाए, कैसे खेती की तैयारी की जाए?
3: हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कि खेत की तैयारी और रोपनी में खासकर पौधों से पौधों की दूरी और उसमें कितने संख्या में पौधे लगाएं, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उत्पादन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। और इसके लिए जो है सो खेत की तैयारी करते समय दो तीन चास करने के बाद उसमें कादो अच्छी तरह कर लें, किसी प्रकार का घास फूस उसमें नहीं खेत में रहने दें और खेत को समतल रखें ताकि समान रूप से पूरे खेत में पानी रहे, और इसके पश्चात रोपनी करनी चाहिए। रोपनी के बाद जो मुख्य रूप में ध्यान देनी है कि किसी भी जगह पर एक या दो से ज़्यादा पौधे को नहीं लगाने की ज़रूरत है, और पौधे जब लगाते समय भी उसको ज़रूरत से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक ही गहराई पर उसको लगाएं। ज़रूरत से ज़्यादा उसको नीचे गाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है।

0: ऐसा करने से पौधे तुरंत स्थापित होते हैं और इसका कल्ले निकलने और उनको स्थापित होने और पौधे की पुष्ट होने की पूरी उम्मीद रहती है और वो जल्दी ही व्यवस्थित ढंग से स्थापित हो जाते हैं।
1: ब्रजकिशोर विमल जी कहने का मतलब है कि एक एक पौधा लगाएं, दो दो पौधा लगाएं, लेकिन दूरी कम रहनी चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए।
0: हाँ, 10 से कतार की दूरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर रखें, चूँकि लंबी अवधि वाले प्रभेद हैं।

0: होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए।
1: हाँ, 10 कतार से कतार की दूरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर रखे, चूँकि लंबी अवधि वाले प्रभेद हैं। बाद में अगर देर से बुआई करते हैं तो इसकी दूरी आप घटा सकते हैं, 10 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, लेकिन अभी लंबी अवधि वाले प्रभेद लगा रहे हैं तो कम से कम कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर हो और पौधे से पौधे की दूरी भी 15 सेंटीमीटर के आसपास हो। इसलिए अगर चूँकि लंबी अवधि वाले प्रभेद में उसमें कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो पौधे ज़्यादा एक साथ हो जाएंगे तो उनके बढ़वाड़ में परेशानी होगी। इसलिए 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का रोपनी अभी करना सबसे लाभप्रद।
0: खेती की जब तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो कितना उर्वरक डालना चाहिए हम लोगों को अंतिम जुताई के समय और बाद में कितनी टॉप ड्रेसिंग होनी चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए कि उर्वरक के विषय में किसानों को मन में कई तरह की बातें आती हैं। अभी जो है उर्वरक जो है सो धान में जो अनुशंसित किस्में हैं और समय से बुआई हो रही है उसकी, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 किलो नेत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना होगा पूरे फसल के लिए, और 40 किलो स्फुर और 20 किलो पोटास ही उपयुक्त है, अनुशंसित है। इसमें जो है सो बुआई के समय नेत्रजन की आधी मात्रा, मतलब 50 किलो प्रति हेक्टेयर आप नेत्रजन बुआई के समय डालें, पूरा स्फुर जो है सो 40 किलो वो बुआई के समय रोपाई के समय ही डालें, और 20 किलो जो पोटास है उसको भी बुआई के समय मिला के खेत में अंतिम जुताई के पहले खेत में समान रूप से छींट दें, उसके बाद उसमें पौधे को ट्रांसप्लांट करें, स्थापित करें।
0: जी, और कितने दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग होनी चाहिए?
1: क्रॉप ड्रेसिंग का ऐसे अमूनन तरीका है कि पहली सोहनी जब आप करते हैं, सोहनी मतलब घास को निकालते हैं, लगभग रोपरा होने के 25 से 30 दिन के अंतराल के बाद
0: जी
1: जब उसमें घास वगैरह निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो है सो पहला उपरिवेशन जिसको आप फर्स्ट क्रॉप ड्रेसिंग कहते हैं, यह 25 से 30 दिन के बाद होनी चाहिए, जिसमें नेत्रजन के 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए, खासकर यूरिया के फॉर्म में इसको लोग टॉप ड्रेसिंग करते हैं, और ये सोहनी के तुरंत बाद कर देना अति आवश्यक है।
0: जी, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग होगा?
1: दूसरा टॉप ड्रेसिंग में कहा गया है कि जब भी पौधा गाभा के समय आने लगे, मतलब उसका प्रोडक्टिव फेज जब शुरू हो जाता है, उस समय जब आने लगे, गाभा में आने लगे, तो उस समय सिंचाई के उपरांत पौधे में हल्का पानी रहे खेत में, उस समय उसका लास्ट डोज ऑफ नाइट्रोजन अगर उसमें अनुशंसित मात्रा में दी जा रही है 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, वही देना चाहिए, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार किसान भाइयों को इसमें परेशानी होती है कि लास्ट डोज ऑफ नाइट्रोजन जब मात्रा जब वो अधिक कर देते हैं, हम लोगों का किसानों के साथ अपना निजी अनुभव है, तो उसमें होता क्या है कि उनका प्रोडक्टिव फेज आने में, गभा निकलने में काफ़ी विलम्ब होता है, और पौधे जो है सो नाइट्रोजन का मतलब है कि पौधे में हरियाली लाना और पौधे का बढ़वार करना, तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ की ओर ज़्यादा अग्रसारित करता है, और अंत में स्थिति ये हो जाती है कि पौधा और वेजिटेटिव ग्रोथ छोड़ के प्रोडक्टिव फेज में नहीं आने के कारण अगर कहीं लंबी अवधि वाले पौधे में पहले ठंडा पड़ने लगे तो फूटने में परेशानी होती है। इसलिए किसान भाई अंतिम डोज जो है वह कभी भी किसी भी कीमत पर उसको जो अनुशंसित मात्रा है 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, इससे ज़्यादा नहीं दें।
0: अच्छा, और जहाँ तक पानी की बात है तो कितना पानी लगा रहना चाहिए धान के खेत में, और क्या कभी सूखा होना चाहिए कि नहीं?
1: नहीं, देखिए अभी जो हम लोग नई नई विधियां आ रही हैं धान के रोपने में, जिसमें कि श्री मेथड है,
0: SRI,
1: हाँ जिसको SRI कहते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इस विधि में बताया गया है कि कभी भी खेत में पानी लगा के नहीं रखना चाहिए, मतलब हमेशा खेत गीला रहे, नमी उसमें बरकरार रहे, लेकिन स्टैंडिंग वाटर मतलब पानी का जमाव उसमें नहीं होना चाहिए। और इस विधि से यह पता चलता है, चूँकि इस विधि की उत्पादन क्षमता अभी जो आम उत्पादन क्षमता है इसका दुगना है, तो इसलिए यह बताया जाता है कि खेत में पानी का जमाव नहीं हो, यह

0: बहुत ही आवश्यक है, चूंकि पौधे में जितना एयरेशन, रूट एयरेशन, उनके जड़ में जितनी हवा लगेगी उतने पौधा स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, और उतने ज़्यादा उनमें कल्ले निकलेंगे, उतने ज़्यादा उनमें बाली की लंबाई बढ़ेगी, उतने ज़्यादा उसमें दाने भरेंगे, और ये सब सीधे ज़्यादा उत्पादन की ओर हमको ध्यान दिलाता है। इसलिए SRE मेथड में कभी भी खेत में पानी लगना नहीं चाहिए, ऐसा बताया गया है, लेकिन नमी भी हमेशा बरकरार रहना चाहिए, मतलब किसी भी परिस्थिति में जमीन फटना नहीं चाहिए
1: जी,
0: इतना गीला रहे कि जमीन फटना नहीं चाहिए। ऐसे पुराने विधि में जैसे हम लोग जानते हैं कि रोपनी के समय 1-2 सेंटीमीटर पानी हमेशा जमीन से ऊपर रहे ताकि रोपनी उसमें आसानी से की जा सके, उसके लगभग किसान भाई ऐसा करते हैं कि 10 से 15 दिन तक लगातार पानी बनाए रखते हैं, जिसके कारण कि खेत में घास नहीं आए। लेकिन घास नहीं आने के कारण पौधे को स्थापित होने में पानी लगे के रहने के कारण विलंब होता है और देरी से होती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके पौधे स्थापित हों, इसलिए खेत को हमेशा पानी से लगाए नहीं रखिए, उसको गीला रखिए, इससे उत्पादन हमारा ज़्यादा अच्छा होता है
1: जी। और जो SRI विधि की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये क्या, इस तकनीक में कैसे रोपनी की जाती है, कितनी दूरी होनी चाहिए, कैसे लगाना चाहिए?
0: इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2-3 बातें जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है कि बिचड़े की उम्र, SRI मेथड में जो है बिचड़े की उम्र जो है हमारी जो होती है 8-10 दिन का बिचड़ा लगाया जाता है। चूँकि बिचड़ा जितना टेंडर एज, जितना नाजुक स्थिति में लगाया जाता है, उतने जल्दी स्थापित होता है और उतने जल्दी उसमें कल्ले फूटेंगे और उतने जल्दी उसमें बढ़वार होगी।
2: देखिए कितना नीमन जानकारी दीनी ब्रज किशोर बिमल जी, यहाँ से बहुत फरिया फरिया के बात कहनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, ये दोनों लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमनी के अब अगला चर्चा करे से पहले हम चाहते नहीं कि थोड़ा संदेश सुन लिया
3: जी, जरूर,
2: पहले संदेश सुनल जाए।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतरवर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई

0: मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
1: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी सुगिया बहन, अब हमने के चले गए अपना खेत बहार में।
1: जी जी,
0: जहाँ की
1: हमने के रोप अब जाए बैगन। बताई कैसे रोपल जी?
0: देखी बैगन के खेती खातिर दोमट माटी जौन होला तो नीमन मानल जाला। एकरा साथे साथे बैगन के खेती तो सालो भर होला, लेकिन अभी जौन मौसम चल रहल बा वर्षा ऋतु वाला बैगन रोपे के सीजन चल रहल बा। एकरा खातिर जौन माटी होए के चाहिए अच्छा जल निकासी वाला होए के चाहिए, रेतीला दोमट माटी जौन होला जौना के पीएच मान 5.5 से 6.6 होके वो तरह के माटी अच्छा मानल जाला।
1: एकरा के में पानी ना लगे
0: जी। एकरा में तापमान देखल जाओ तो पौधा के मतलब बैगन के पौधा के अच्छा विकास खातिर 20% सेंटीग्रेड से 30% सेंटीग्रेड तक तापमान के जरूरत होला। अब रह गई कि एकर रोपाई करे खातिर जौन खेती कैल जाला एकर एकरा के 2 से 3 बार गहरा जोताई करके माटी जब भुरभुरा हो जाओ तब एकर रोपाई करे के चाहिए। प्रति एकड़ 2 से 3 टाली सड़ल गोबर के खाद के प्रयोग भी हमने के खेत में करे के चाहिए। आ जल भराव से बचे खातिर 1 फीट ऊंचा मेढ़ा बना के आ कियारी बना के तब ओकरा में बैगन के पौधा लगा,
1: ताकि ओमे पानी मत लगे, जड़ मत सड़े।
0: हाँ, सड़े मत। आ एह तरह से लाइन से लाइन के दूरी 4.5 से 5 फीट रखे के चाहिए। आ पौधा के दूरी 1.5 से 2 फीट तक रखे के चाहिए। गर्मी के मौसम में 6 से 4 दिन के अंतराल पर एकर सिंचाई करत रहे के चाहिए। आ एह तरह से तना छेदक आ फल छेदक कीट से बचाव खातिर समय समय पर कीटनाशक के छिड़काव भी करत रहे के चाहिए। तो देखी अब हमने के चले के अभी गाँव में हमने के जौन धान के खेती हो रहा बा एकरा में बहुत जगह जहाँ वर्षा नहीं हो तो यहाँ पानी के भी अभाव हो गई
1: जी।
0: तो हमने के वो में कितना पानी रखे के चाहिए?
1: देखिए रजू भाई, धान एक ऐसा फसल है जौन के पानी के आवश्यकता तो अधिक होला, लेकिन एकर मतलब ये नहीं है कि खेत में खूब पानी भरल रहे और पौधा में हवे मत लगे
0: जी।
1: तो एकरा खातिर मतलब रोपाई के बाद 7 से 10 दिन तक पानी खेत में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर रखे के चाहिए, और एकरा बाद पानी निकाल देवे के चाहिए ताकि पौधा में हवा लग सके और ओकर बढ़वार अच्छा से हो सके। और एकरा साथ पानी के पूरा तरह सूखने के बाद दो तीन दिन के अंतराल दे के फिर सिंचाई कर देवे के चाहिए। एकरा से ये लाभप्रद मानल जाला। यह विधि से पानी के बचत भी होला और पौधा के जड़ भी पर्याप्त जड़ में पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाला। बारिश के दिन में खेत में जल भराव न होके दी, अतिरिक्त पानी के निकासी के उचित व्यवस्था होके के चाहिए। कहें कि लंबा समय तक पानी जमा रहे से जड़ कमजोर हो जाला और कीट रोग के भी

0: प्रकोप बढ़ सकत है।
1: तो देखी रहल हमने के किसान भाई लोग के धान के अपन रख रखाव करे के चाहिए। अब देखी एमे हमने के किसान भाई खाती भारत मौसम विज्ञान जौन बा एकरा पर आधारित ही सलाह दिहल जा रहल बा कि आगामी कुछ दिन तक वर्षा के संभावना के देखते हुए खड़ा फसल जौन बा हमने के किसान भाई के ओकर फसल पर सिंचाई करे के काम रोक देवे के चाहिए आ कीट खाद कीटनाशक के प्रयोग तबे करे के चाहिए जबकि आसमान साफ हो। देखी धान के बारे में इस सलाह दिहल जा रहल बा कि कुछ दिन से लगातार जल हो रहल बा एकर लाभ उठावे के चाहिए आ वर्षा के संभावना के देखते हुए धान के रोपाई खातिर ये अच्छा समय बा। रोपाई के पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस आ 30 किलोग्राम पोटास आ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट के प्रयोग हमने के करे के चाहिए। सुगंधित धान के किस्म भागलपुरी कतरनी आदि के बुआई करे के चाहिए। किसान अपन निचला जमीन के चारों तरफ मजबूत मेढ़ बना ली आ वर्षा जल के जौन बा ओकरा के रोके के भी कोशिश करी। एकरा में मक्का के जे भी किसान भाई खेती के लिए बनी 15 से 20 दिन खातिर निकौनी कर सकिना। मक्का में धान बाल निकलत समय नेत्रजन के ऊपर से छिड़काव कर
0: सकी
1: ना। इस तरह से बहुत सा किसान भाई ऐसन बनी जे कि मतलब आम के भी खेती के लिए बनी तो वहाँ लोग के इस सलाह दिहल जा रहल बा कि जुलाई अगस्त के पौधा में रोपल जौन पौधा बा ओकरा में कलमी यदि निकलल होके तो ओकर रोपाई 10 से 20 मीटर के दूरी पर आ बीजू पौधा के रोपाई 12 से 12 मीटर के दूरी पर करे के चाहिए। सघन बागवानी खातिर 5x5 मीटर आ अमरा पाली पौधा खातिर 2.5 से मतलब 2.5 मीटर दूरी रखे के चाहिए। फलदार वृक्ष में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 300 ग्राम फास्फोरस आ 700 ग्राम पोटास आ 80 से 100 किलोग्राम सड़ल गोबर के खाद के प्रयोग हमने के करे के चाहिए।
0: जी अब समय बाकी हमने के कुछ मौसम संबंधी जानकारी जानी जाए।
1: जी
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान के अवधि में 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के दौरान आसमान में घना बादल छेले रही और जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के और हल्का वर्षा होके के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत तथा दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से पूर्वा हवा चले के भी अनुमान बा।
1: तो देखिए सुइया बहन अब हमने के स्टूडियो के घड़ी और अधिक कुछ बोले के इजाजत निके देत। चलत चलत सब श्रोता भाई या किसान भाई लोग के रजू भाई की तरफ से नमस्कार और सुगिया बहन डौरा के भी
0: नमस्कार। रजू भाई सुगिया बहन की तरफ से सबको के नमस्कार
2: देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम सांझ गीत का, और इसके अंतर्गत आइए लेते हैं आनंद कुछ है। बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का पहला भोजपुरी फिल्मी गीत हमने लिया है इंदु सोनाली और अनामिका सिंह की मधुर आवाज़ों में। प्यारे लाल यादव के शब्द हैं और संगीत दिया है अशोक कुमार दीप ने। फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल।

सांस्कृतिक कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं अभी आपने सुना है इंदु सोनाली और अनामिका सिंह की आवाज़ों में। प्यारे लाल यादव के शब्द थे, अशोक कुमार दीप के संगीत थे और फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहन राठौड़ और उदित नारायण की आवाज़ों में। इसे लिखा है प्यारे लाल यादव ने, संगीत निर्देशन है राजेश रजनीश के और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

0: मोहन राठौड़ और उदित नारायण की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का यह भोजपुरी गीत। शब्द थे प्यारे लाल यादव के और संगीत दिया था राजेश रजनीश ने। श्रोताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
0: संगीत कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है विनय बिहारी ने और संगीत दिया है लाल सिन्हा ने।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म परिवार का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत जिसे गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। गीत को लिखा है विनय बिहारी ने और संगीत दिया है धनंजय मिश्रा ने।

श्रोताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंतिम गीत अभी आपने सुना, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, जिसे लिखा था विनय बिहारी ने, संगीत निर्देशन था धनंजय मिश्रा का और फिल्म का नाम था परिवार। तो श्रोताओं, इसी के साथ भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांस्कृतिक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब थोड़ी देर में 7:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोता सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी श्रोताओं को आज से शुरू हो रहे पावन माह श्रावण की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं स्थानीय गतिविधियों से। जिला मुख्यालय सासाराम से दक्षिण पूर्व कैमूर पहाड़ी की तलहटी में अवस्थित माँ ताराचंडी धाम में श्रावणी मेला का प्रारंभ हो गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने ध्वजारोहण कर मेला की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष सदर SDM डॉक्टर नेहा कुमारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी विनय कुमार, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, ताराचंडी कमेटी के सदस्य, जनप्रतिनिधि व श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मंदिर परिसर एवं मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि श्रावणी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीम एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक के व्यवस्था भी लागू की गई है। यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम आपको बता दें कि 28 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस श्रावणी मेला में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ तारा चंडी धाम का दर्शन व पूजन करेंगे। इस दौरान कई संगठनों द्वारा ओढ़नी कढ़ैया समेत अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। जिले में गुरु पूर्णिमा पर्व बुधवार को पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर शहर के विभिन्न मठों आश्रमों मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वातावरण गुरु मंत्रों भजनों और शंख ध्वनि से गूंज उठा। ताराचंडी धाम स्थित महर्षि अंजनेश आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों संत श्रद्धालु और भक्त उपस्थित हुए। आश्रम के लोगों ने व्यवस्थाओं को पूरी तरह से संभाला। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। श्रोताओं, कैमूर पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध रोहितेश्वर धाम मंदिर में आयोजित श्रावणी मेले के शुभारंभ के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शिव नदी तट से प्रारंभ होकर नगर पंचायत रोहतास के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रोहितेश्वर धाम मंदिर पहुंची। पूरे मार्ग में हर हर महादेव व बोलबम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु एवं स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक श्रद्धा और भक्ति के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परंपरा के तहत आयोजित 24 घंटे के अखंड कीर्तन का समापन पूर्वाह्न 11 बजे हुआ, जिसके दौरान पूरा कैमूर पहाड़ी क्षेत्र भक्ति गीतों और हरिनाम संकीर्तन से गुंजायमान हो उठा। समापन के बाद महंत विष्णु गिरी की विधिवत पूजा अर्चना और आरती की गई। इसके बाद महाभंडार का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्णिमा पर गुप्ता धाम पहुँचे श्रद्धालुओं को भी प्रसाद वितरित किया गया। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे रोहतास और कैमूर जिले की आज की स्थानीय गतिविधियों पर। अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सावन पर फिल्माया गया गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, टोनी कक्कर ने इसे लिखा है, संगीत दिया है मिथुन ने और फिल्म का नाम है क्रिएचर 3D।

तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं संपन्न होता है। यही आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 7:25 हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही।
2: कड़ी सुरक्षा, नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक लगभग 34% मतदान का अनुमान। राज्यसभा में आज पेश किया गया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर चर्चा जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज में 1,00,000 से अधिक कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में किया स्नान। अब समाचार विस्तार से। पटना के बांकीपुर की प्रतिष्ठित विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक 34% मतदान होने की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। महिलाओं और युवा मतदाताओं ने विशेष उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने विशेष इंतजाम किए थे। मतदान केंद्रों और आसपास के इलाकों में जिला पुलिस बल के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सभी 422 बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी गई। मतदान की समाप्ति के साथ ही 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
2: मतदान के दौरान कैसा रहा माहौल जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन का। आशीष, बताएं कैसा रहा आज का मतदान?
4: जी खालिद, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिली। युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता भी पूरे उत्साह के साथ मतदान करने पहुंचे थे।
2: जी बताएं कि किन प्रमुख लोगों ने मतदान में भाग लिया?
4: आपको बताते चले कि प्रमुख नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पटना विमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया। वहीं डाक बंगला स्थित बूथ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर अपने पुत्र विवेक ठाकुर उनके साथ वोट डालने पहुंचे थे। इसके अलावा अलग अलग मतदान केंद्रों पर राज्य सरकार में मंत्री

0: अशोक चौधरी और रामकृपाल यादव भी मतदान करने पहुंचे। वहीं वार्ड 19 स्थित एक बूथ पर भाजपा के प्रत्याशी नीरज कुमार, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
1: अगर मुद्दों की बात करें आशीष, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे?
0: जी खालिद, विभिन्न मतदान केंद्रों पर जब हमने मतदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने विकास को सबसे प्रमुख मुद्दा बताया। कई मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखकर मतदान किया है। वहीं युवाओं ने रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता बताया, जबकि कई वरिष्ठ मतदाताओं का मानना है कि विकास कार्यों की जो निरंतरता है वह यहाँ बनी रहनी चाहिए।
1: धन्यवाद आशीष इस जानकारी और अपडेट के लिए। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने कहा कि उनका अपना मत विकास के लिए दिया है। मतदाताओं ने स्पष्ट किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, साफ सफाई, कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया।
2: यही कि जो हो एजुकेशन एंड ऑल को लेके वो अच्छा हो, जो फ्यूचर का हो वो एजुकेटेड हो, लोगों के यूथ के प्रॉब्लम्स को समझे।
3: उम्मीद तो यही है कि अच्छा करे, विकास करे। हम लोग आम जनता वोट दे रहे हैं, विकास तो करना उन्हीं को है।
4: बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, बच्चों की नौकरी वगैरह है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर है, उसी मुद्दे पर दिए हम।
5: हमारा मुद्दा विकास रहता है। अब की बार पढ़ाई, अभी आप देख रहे होंगे कि एंटी रिजर्वेशन भी चल रहा है, तो ये सब तीन चार मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इसको नजर में रखा जाए।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी से रहा है, इसलिए चुनाव में जीत सुनिश्चित है।
6: आज अपने भाजपा एनडीए के उम्मीदवार नीरज जी को वोट देकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है, लेकिन एक बात मैंने देखा है कि बांकीपुर की जनता का लगाव बीजेपी के साथ वर्षों से है।
1: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि 3 अगस्त को नतीजे में भाजपा की बड़ी हार होगी।
7: जहां से भी फीडबैक आ रहा है, इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी भारी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। समाज का हर तबका, चाहे किसी जात के हो, धर्म के हो, खुल करके जो है वोट दे रहे हैं।
1: राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इससे पूर्व कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक पेश किया। ये विधेयक कल लोकसभा में पारित कर दिया गया था। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तथा दोषी ठहराए गए अपराधियों की संपत्तियों की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पहले की सभी सरकारों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पहली सरकार है जिसने एंटी पेपर लीक कानून बनाने की पहल की है।
8: ये कोई लीक कोई इसी सरकार में हुआ, इसका एक इतिहास है। हर एक पार्टी के सरकार में हुआ और हर एक राज्य में कभी न कभी ये परिस्थिति बनी है। सरकार सेंसिटिव हो करके दोनों साइड, एक तो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की, इतना इंपॉर्टेंट कमिटी जो ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो और टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो, और दूसरा कि हार्शेस पनिशमेंट लोगों को, और पूरा देश, तरीका तो वही हो सकता है, इनके प्रवचन से तो ठीक हो जाएगा ऐसा है नहीं।
1: आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज रोहतास जिले में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के राज्य भर में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। ईओयू के अधिकारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सासाराम के बेदा स्थित विभागीय कार्यालय और डेहरी ऑन सोन स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई।
9: यहाँ के अलावा अन्य ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है आर्थिक अपराध की, दो
1: पर संपत्ति। आरोपी कार्यपालक अभियंता के पटना के दानापुर, बांका और मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस बार सावन महीने के दौरान 4 सोमवार पड़ेंगे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, पटना जिले के बिहटा स्थित बिटेश्वरनाथ और फतुहा स्थित बैकटपुर धाम समेत विभिन्न शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे कैमूर संवाददाता ने बताया कि मां मुंडेश्वरी मंदिर में चतुर्मुख महादेव के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और अन्य गणमान्य लोगों ने राज्यवासियों को पवित्र सावन मास की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि भगवान भोलेनाथ से कामना है कि हमारा समाज सद्भाव, सेवा और संस्कार के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। सावन माह की शुरुआत के साथ ही सुल्तानगंज के पवित्र गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
1: सावन के पहले दिन ही बाबा अजगैबीनाथ धाम में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपनी पवित्र यात्रा की शुरुआत की। सुबह तड़के 3 बजे से ही नमामि पवित्र गंगा घाट, सीढ़ी घाट और जहाज घाट पर श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। मेला प्रशासन के अनुसार विभिन्न गंगा घाटों पर आज 1 लाख से अधिक कांवरियों ने स्नान किया और जल भरा। जिला प्रशासन सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र और कांवर पथ पर CCTV कैमरों से निगरानी रख रहा है। कांवरिया पथ पूरी तरह केसरिया रंग में रंग चुका है। चारों तरफ सिर्फ बोलबम, हर हर महादेव और बाबा नगरी चलो के गूंजते जयकारे माहौल को पूरी तरह शिवमय बनाए जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: स्वास्थ्य विभाग ने सावन के महीने के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने शुभकामना देते हुए कहा कि श्रावणी मेला के दौरान किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 16 जिलों में विशेष स्वास्थ्य शिविर का संचालन किया जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। मानसून की गतिविधियां बढ़ने के कारण पटना और आसपास के विभिन्न स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीवान समेत प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ और पश्चिम चंपारण जिले में अनेक स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: दिनांक 31 जुलाई को राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भभुआ एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: नेपाल के सुनसरी जिले में तनाव की स्थिति को देखते हुए अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SSB, नेपाल सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस ने सीमा क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्ती अभियान चलाया। SSB की 52वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट आलोक कुमार ने बताया कि सीमा क्षेत्र में सभी स्थानों पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। कैंप कमांडर निरीक्षक प्रकाश चंद्र पांडे ने बताया कि पूरे क्षेत्र में गश्ती अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस समय चौकसी और बढ़ा दी गई है। इधर नेपाल प्रशासन ने बिना किसी वैध पहचान पत्र के भारतीय सीमा से नेपाल सीमा में लोगों के प्रवेश पर

0: रोक लगा दी है। सारण जिले में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव कार्यक्रम के दौरान भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने किसानों को पशुओं की देखभाल के लिए टीकाकरण और बचाव के अन्य उपायों की जानकारी दी। वैभव सूर्यवंशी को आगामी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ईस्ट जोन टीम का उप कप्तान चुना गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने इस उपलब्धि के लिए वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी हैं। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से दरभंगा समाहरणालय सभागार में हर घर तिरंगा विषय पर क्षेत्रीय मीडिया वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट राजेंद्र कुमार और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के डीआरडीए सभागार में आपदा प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक लगभग 34% मतदान का अनुमान। राज्यसभा में आज पेश किया गया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर चर्चा जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुल्तानगंज में 1 लाख से अधिक कांवड़ियों ने उत्तर वाहिनी गंगा में किया स्नान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया टोपी।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar.
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आभाष रंजन।
3: सावन का पवित्र माह आज से शुरू हो गया है। जिले के बराबर पहाड़ स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम में श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेला क्षेत्र में आकर्षक लाइट व्यवस्था, पंडाल, सीसीटीवी कैमरे, सूचना पट और साइनेज, पेयजल, अस्थायी शौचालय, बैरिकेटिंग और साफ सफाई की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर परिषद, पुलिस और आपदा प्रबंधन सहित संबंधित विभागों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रावणी पूजा और मेले को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नगर भवन में संबंधित अधिकारियों, पुलिस निरीक्षकों और थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिले में जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी छिड़िंग

0: आई भुटिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राज्य स्तरीय रैंकिंग में जहानाबाद तीसरे स्थान पर है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को बधाई देते हुए आपसी समन्वय और गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ अभियान को गति देने का निर्देश दिया ताकि जिले को आगामी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिल सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जहानाबाद में सेवा संकल्प समर्पण थीम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया गया। जिले में उपलब्धियों पर आधारित वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 100 लाभुकों के बीच योजनाओं का लाभ वितरित किया और प्रशस्ति पत्र दिए गए। घोसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। जिलाधिकारी छिरिंग भाई भुटिया ने कार्यक्रम की जानकारी दी।
1: माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने अपने प्रथम 100 दिनों में सुशासन, विकास एवं जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की है। इसी विकास यात्रा में जहानाबाद जिला में तेज गति से आगे बढ़ते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले के सभी 7 प्रखंडों में 7 सरस्वती विद्या निकेतन स्थापित करने की पहल की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5465 आयुष्मान कार्ड तथा 547 वही बंधन कार्ड जारी किए गए।
0: श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर संयुक्त श्रम भवन में ग्रामीण प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रत्येक पंचायत से एक एक श्रमिक ने भाग लिया। श्रमिकों को श्रम कानूनों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत स्वाभाविक मृत्यु पर आश्रितों को 50,000 रुपये और दुर्घटना में मृत्यु पर 2,00,000 रुपये की अनुदान राशि के प्रावधान की जानकारी दी गई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस अवसर पर जिले में ANM आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इसमें हेपेटाइटिस के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी गई। सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षित रक्त और इंजेक्शन का इस्तेमाल तथा हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण बीमारी से बचाव के प्रभावी उपाय बताए गए। साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट की रोकथाम को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने राज्य स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक में आम लोगों को ऐसे फर्जी कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई जिसमें ठग खुद को पुलिस, CBI या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए डराते हैं। लोगों से ऐसे मामलों में पैसे ट्रांसफर नहीं करने और तत्काल इसकी सूचना देने को कहा गया। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लंबित और अस्वीकृत ऋण आवेदनों की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पीयूष की अध्यक्षता में बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक में पात्र लाभार्थियों के आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। तकनीकी या दस्तावेजिक कमी के कारण अस्वीकृत आवेदनों को त्रुटि सुधार का अवसर देने और पात्र आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा गया।
2: अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आभाष रंजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आपके अभी इस इंतज़ार की घड़ी को हम अब करते हैं ख़त्म और लीजिए पेश है ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। मैं हूं आप सभी का रेडियो साथी रवि भूषण। श्रोताओं, आज से पवित्र महीना सावन का प्रारंभ हो गया और हम जानते हैं कि इस महीने का लगभग सभी काफ़ी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, जगह जगह पर्वतों से पहाड़ियों से पानी के झरने गिरते हैं, मन प्रसन्न रहता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहता है। और ऐसे में इससे बेहतरीन मौसम में कोई ख़ास अपना अगर आ जाता है तो मज़ा कुछ और ही हो जाता है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है, लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं, पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सभी श्रोताओं को सावन महीने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आइए शुरुआत करते हैं सावन के इस खूबसूरत गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म में आया सावन झूमके से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित।

श्रोताओं, ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम ई मनपसंद के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संसद समीक्षा के प्रसारण के बाद। इसे हम प्रसारित कर रहे हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: स्थिर रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज

मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएम के सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएम के सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएम के सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएम के सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जान

जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगणमन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लिखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहाँ नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1200

करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्त, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग, लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एल के सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास,

झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे संसद समीक्षा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ई मनपसंद के शेष गाने। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले और शैलेंद्र की आवाज़ में फिल्म सुहाग का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णवी कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक के मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौंड और मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक के लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुनीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। इसी गीत को सुनने की फरमाइश करने वाले हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: हमारे श्रोता सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ए मन पसंद। श्रोताओं कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की बेहतरीन आवाज़ों में दबंग 3 फिल्म का यह गीत जिसे लिखा है इरफान कमाल ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं आकाशी सासाराम से सकीबा आलिया कमाल मिराज निसार दतरेंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्गे पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई शेख चंद फारूक फूलवाले सईद खलील मुबीन भाई मोहम्मद यासीन मोसा करीम और शेख सलीम। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड

मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।

तो श्रोताओं, दबंग थ्री के इसी गीत के साथ है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद का आज का यह गीतों भरा सफ़र यहीं संपन्न होता है। यह सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ है। अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में श्रोताओं के फरमाइशी नगमों के साथ हम फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का तीसरा संस्करण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
5: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
4: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
6: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
7: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
6: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
4: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
8: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने

0: में रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
2: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
4: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम

0: धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपये पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और

0: प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.
2: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन लोकगीतों का। पहला देशभक्ति लोकगीत भरत सिंह भारती की आवाज़ में।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आपने सुना पूर्वी लोकगीत कलाकार थे मनोरंजन ओझा। कार्यक्रम का अगला और अंतिम लोकगीत नीलेश्वर मिश्रा की आवाज़ में।

नीलेश्वर मिश्र द्वारा गाए इसी लोकगीत के साथ है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकधारा। अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है कार्यक्रम महफिल। महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मेहदी हसन और तरन्नुम नाच की आवाज़ों में यह बेहतरीन गज़ल, जिसे हमने लिया है एल्बम नक्श फरियादी से। शब्द मिर्ज़ा गालिब के हैं और संगीत दिया है मुजाहिद हसन ने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: महफिल कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में कलामे मोहब्बत से लिया गया यह गजल।

0: गुलाम अली द्वारा गाई इसी गज़ल के साथ है गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: बस थोड़ी ही देर में।

0: इसमें भाग ले रहे हैं दूरसंचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश।
1: ये पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
1: संगीतकार रवि,
3: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं।
1: तुझे तक तक तक तक ते रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना।

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

जीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे।

साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारेगामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

0: प्यार का।
1: सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

इसके बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनी।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती
1: अचार के साथ
0: मुंबई
1: मैं अतः
0: की आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today.
3: Now question hour, question number 121, Sriman Constantine Ravindran ji.
4: Question number 21.
5: प्रश्न संख्या 121। क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
4: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
3: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान Constantine Ravindran ji.
6: Thank you, sir. Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and the tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports? Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation? The expected
3: Constantine ji, be specific about your question. So okay. Long question, then come to the specific question, please.
6: Okay,
3: carry on.
6: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
7: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and Management Committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
3: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
8: Sir, I would like to know from

0: Honorable Minister, where the ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
2: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit the concerned community, which is the question is raised by the particular member. Yes, also.
1: Third supplementary, श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
3: एनवायरनमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
2: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
2: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है. वो बायोडाइवर्सिटी से अलग है. अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे.
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी.
5: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं. ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिक

0: तुम की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है। ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
2: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
0: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ the new 50% basic wage rule under the code on wages will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बन गया। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत
5: जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम

0: करने वाले वर्कर्स है, ईएसआईसी के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा, और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था, और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा ITI की व्यवस्था करी गई है।

0: एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123 श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है। और देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेज है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, 3 क्लासिफिकेशन दी है ए, बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगहें हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन घर में फैन चाहिए।

चाहिए, तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था। आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में

0: तो माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में एक फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है। तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं। उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once और 3 year once और 2 year once रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में, किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे है, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटैक्ट केयर में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने कि अगर कोई योजना है तो सार बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको, माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना USA 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहां जो बात रखी गई है कि अपने वर्क

0: वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124, श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: 124
3: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है। और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: रक्षा निखिल खडसे, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
2: टल पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में। इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते ही है कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
6: शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें, हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं, और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे, आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा, और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशंस का जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम, उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है, और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से 1 साल पहले

0: हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है सरकार की ओर से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
4: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी

0: कानून लागू है, इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
3: क्वेश्चन नंबर 125,
4: ऑनरेबल
3: चेयरमैन सर।
4: प्रश्न संख्या 125, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
3: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
5: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारे हैं। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3000

0: 1500 maternal benefit भी उसको दे रहे हैं सर. एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हमें एक्सटेंशन किया है. वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं. महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर. अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ. ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में. ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022. इसका पहले का आंकड़ी नहीं है सर, हमारे देश में कोई आंकड़ी नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं. पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर. एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसको आंकर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है. नया सब्सक्राइबर पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69. लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके कारण है अलग अलग सर. हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं, अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइजेस जुड़े हैं. वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है. इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है. अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं. ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया. इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर. मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेनर्स बनाया है. पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर. इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया. अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया. वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं. एंड किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए. इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए. इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है.
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी.
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है. महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ.
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है. इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड. सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी

0: बताए सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किए हैं सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और एनी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, ना महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नाइट ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षा के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
2: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, यह मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर कविता पटीदार जी।
3: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
5: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
6: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। थैंक यू।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर।

0: While reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiaries?
1: Honorable Minister.
2: Dhanyavad Sabhapati ji. Manani Sadasya ne jo prashn kiya hai, National Legal Service Authority se sambandhit hai, aur isme kitna kharcha hua, kitne log labharthi hue, ye jawab inko de diya gaya hai. Main is scheme ke bare mein thoda batana chahta hu ki samaj ke gareeb aur vanchit vargon ko निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है. ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं. जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं. डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं. जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत तीन सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे. ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है. ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पर रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है. और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं. इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए. धन्यवाद.
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी.
3: थैंक यू चेयरमैन सर. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा और में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए
1: हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर.
2: सभापति महोदय, माने सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है. और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं. लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है. ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है. और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है. भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे. धन्यवाद.
1: The House stands adjourned to meet at 2 PM.
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

अभी आप सुन रहे थे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के रिकॉर्डिंग का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में थोड़ी ही देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जाँच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है।

0: Gold, 9 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।